देवै आप दयाल ना छपै छपाइया। हृदय कवल प्रगास उन मन लिवलाइया। जे को करे उस दी रीस सिर शाई पाइया। नानक अपड़ कोई न सकई पूरे सतगुर की वड्याईया। सलोक महला तीजा। अमर वे प्रवाहो है तिस नाल सियाणपना चलई। ना हुजत करनी जाए आप छोड़ सरनाए पवै मन लै रजाए। गुरमुख जम डंड ना लगई हौ मैं विच हों जाए। नानक सेवक सोई आखिया जे सच रहे लिवलाए। महला तीजा। दात जोत सब सूरत तेरी बहुत सियाण पहां मैं मेरी। बहु कर्म कमावै लो मुह व्यापे हौ मैं कदे ना चूकै फेरी। नानक आप कराए करता जोत सपावै साई गल चंगेरी। पौड़ी महला पंजवा। सच खाना सच पहनना सच नाम आधार। गुरपुरै मिलाया प्रभ देवनहार। भाग पूरा तिन जागया जपया निरंकार। साधु संगत लग्या तरिया संसार। नानक सब सलाहकार प्रभ का जयकार। श्लोक महला पंजवा। सबे जी समाल अपनी मेहर कर अन पानी मुचो पाए दुख दालद पहन तार। अरदास सुनी दातार होई सिष्ट ठार। लेवो कंठ लगाए अपदा सबहार। नानक नाम ते आए प्रभ का सफल कार। महला पंजवा। वुठे मेघ सुहावने हुक्म कीता करतार। रिज को पायो ने अगला ठंड पई संसार। तन मन हरिया होया सिमरत अगम अपार। कर कृपा प्रभ अपनी सच्चे सृजनहार। कीता लोड़ै सो करै नानक सद बलिहार। पौड़ी। वड्डा आपा गम है वड्डी वड्याई। गुरसबदी वेख विकसिया अंतर सांत आई। सब आपे आप वरदा आपे है पाई। आप नाथ सब नथियन सब हुक्म चलाई। नानक हर पावै सो करे सब चलै रजाई। सुध राग सारंग बाणी भगता की कबीर जी एक ओंकार। सतगुर प्रसाद। कहा नर गर्भस थोरी बात मन दस दाज टका चार गांठी एंडो टेंडो जात। रहाओ बहुत प्रताप गांव सौ पाए दो लख टका बरात। दिवस चार की करो साहेबी जैसे बनहर पात। ना को लै आयो एहो तन ना को लै जात। रावण हूते अधिक शत्र पात खिन में गए बिलात। हर के संत सदा थिर पूजो जो हर नाम जपात। जिन को कृपा करत है गोविंद ते सतसंग मिलात। मात पिता बंता सुत संपत अंत न चलत संगात। कहत कबीर राम भज बौरे जन्म अकारथ जात। राजाश्रम मित नहीं जानी तेरी तेरे संतन की हों चेरी। रहाओ हस्तो जाए सो रोवत आवै रोवत जाए सो हसै। बस्तो होए होए सो उजर उजर होए सो बसै। जल ते थल

काम ना बिसरियो क्रोध ना बिसरियो लोभ ना छूट्यो देवा पर निंदा मुक्ते नहीं छूटी निफल पई सब सेवा बाट पार कर मूस बिरानो पेट भर अपराधी जेह पर लोग जाए अपकीर्त सोई अविद्या साधी हिंसा तो मनते नहीं छूटी जी दया नहीं पाली परमानंद साध संगत मिल कथा पुनीत ना चाली शाड मानो हर बिमुखन को संग सारंग महला पंजवा सूरदास एको अंकार सतगुर प्रसाद हर के संग बसे हर लोक तन मन अर्प सर्बस सब अर्प्यो आनंद सहज धुन चोक रहाओ दर्शन पेख पय निर्भखई पाए है सगले थोक आन बस्त स्यों काज ना कछु है सुंदर बदन्या लोक श्याम सुंदर तज आन जो चाहत जो कुष्टी तन जोक सूरदास मन प्रभ हथ लीनो दीनो एह परलोक सारंग कबीर जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर बिन कौन सहाई मन का मात पिता भाई सुत बंता हित लागो सब फन का रहाओ आगे कहो किस तुल्हा बंद हो क्या परवासा तन का कहां बिसासा इस भांडे का इतनक लागे ठन का सगल धर्म पुन फल पावहो तूर बांछो सब जन का कह कबीर सुनोरे संतो एहो मन उडन पंखेरू बन का राग मलार चौप दे महला पहला कर पहला एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद खाना पीना हसना सौना विसर गया है मरना खसम विसार खुवारी कीनी त्रिग जीवन नहीं रहना प्राणी एको नाम ते आवो अपनी पासेती कर जावो रहाओ तुदनो सेव है तुझ क्या देव है मांगे ले वह रह नहीं तू दाता जिया सबना का जिया अंदर जियो तुही गुरमुख त्यावै से मृत पावै से ही सुचे हो ही अहनिस नाम जपो रे प्राणी मैले हच्छे हो ही जेही रुत काया सुख तेहा तेहो जेही देही नानक रुत सुहावी साई बिन नाम है रुत के ही मलार महला पहला करो बिनो गुरे अपने प्रीतम हर वरे आन मिलावै सुन कन कोर शीतल मन मोरा लाल रती गुण गावै बरस घना मेरा मन पीना अमृत बूंद सुहानी ही रै गुरमोही मन हर सलीना रहाओ सहज सुखी वर कामन प्यारी जिस गुर बचनी मन मानिया हर वर नार भई सुहागण मंतन प्रेम सुखानिया अवगण त्याग भई बैरागण आस्तर वर सोहाग हरी सोग विजोग तिस कदे ना व्यापै हर प्रभ अपनी कृपा करी आवन जान नहीं मन निर्मल आवन जान नहीं मन निचल पूरे गुर की ओट गही नानक राम नाम जप गुरमुख तन सुहागण सच सही मलार महला पहला साची सुरत नाम नहीं तृप्ते हों मैं करत गवाया पर तन पर नारी रत निंदा बिख खाई दुख पाया शब्द चीन पै कपट ना छूटे मनमुख माया माया अजगर पार लदे अत भारी मर जन्मै जन्म गवाया मन पावै शब्द सुहाया भ्रम भ्रम जोन पेख बहु कीने गुर राखे सच पाया रहाओ तीर्थ तेज निवार ना नाते हर का नाम ना पाया रतन पदार्थ पर हर त्याग गया जत को तत ही आया बिष्टा कीट पय उतही ते उतही महे समाया अधक स्वाद रोग अधकाई बिन गुर सहज नाम पाया सेवा सुरत रहस गुण गावा गुरमुख ज्ञान बिचारा खोजी उपजय बादी बिरसै हम बल बल गुर करतारा हम नीच होते हीन मत झूठे तू शब्द सवार नहारा आत्म चीन तहां तू तारण सज तारे तारनहारा बैस सुथान कहां गुण तेरे क्या क्या कथो अपारा अलख न लखिए अगमा जोनी तू नाथा नाथनहारा किस पै देख कहो तू कैसा सब जाचक तू दा तारा भगतहीन नानक दर देखो एक नाम मिले उर तारा मलार महला पहला जिन तन पिर का साधना जानिया सा बिलख बदन कुमलानी पई निरासी कर्म की फासी
ਬਿਨ ਗੁਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨੀ ਬਰਸ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਘਰ ਆਇਆ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਣ ਮਿਲਾਇਆ ਰਹਾਓ ਨਵ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਠਾਕਰ ਸਿਉ ਆਂਦਨ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੀ ਮੁਕਤ ਭਏ ਗੁਰਦਰਸ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਜੋ ਭਗਤ ਸੁਭਾਵੀ ਹਮ ਥਾਰੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਜਗ ਤੁਮਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਉ ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਇਆ ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਵਜਲ ਫੇਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਰਹਰ ਦੇਖ ਵਿਗਾਸੀ ਤਉ ਧਨ ਸਾਜ ਸਿੰਗਾਰੋ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿਉ ਸੱਚ ਸਾਚੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਆਧਾਰੋ ਮੁਕਤ ਭਈ ਬੰਧਨ ਗੁਰ ਖੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਪਤ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ।

बरसै मेघ सखी कर पा होने आए, मोहे दीन कृपा निध ठाकर नवनिध नाम समाये रहाओ। अनक प्रकार भोजन बहु किए बहु व्यंजन मिसाए, करी पागसाल सोच पवित्रा हुन लावो भोग हर राय। दुष्ट बिदारे साजन रहसे एह मंदर कर अपनाए, जो ग्रह लाल रंगी हो आया तो मैं सब सुख पाए। संत सभा उट गुर पूरे तुर मस्तक लेख लिखाए, जन नानक कंत रंगीला पाया फिर दुख ना लागे आए। मलार महला पंजवा खीरा धार, बारक जब होता बिन खीरा रहन न जाई। सार संभाल माता मुख नीरै तबो तृप्त अगाई। हम बारक पिता प्रभदाता, भूलै बारक अनक लख बरिया, अनठौर नाही जय जाता रहाओ। चंचल मत बारक बपरे की, सर्प अग्न कर मेलै, माता पिता कंठ लाए राखै आनंद सही तब खेलै। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिस बारक भूख कैसी। नव निध नाम निदान ग्रह तेरा, मन बांछै सो लैसी। पिता कृपाल आज्ञा हे दीनी, बारक मुख मांगै सो देना। नानक बारक दर्श प्रभ चाहै, मोहे हृदय बसै नित चरना। मलार महला पंजवा सगल विधि जो रिया हर करया, तजो सगला देसा, कार्य सगल अरंभ्यो घर का, ठाकर का पारोसा। सुनिया बाजै बाज सुहावी, भोर भया मैं प्रेम मुख पेखे, गृह मंगल सोहलावी रहाओ। मनुआ लाए सवारे थाना, पूछो संतां जाए, खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो, भगत करो ने उपाए। जब प्रे आए बसे गृह आसन, तब हम मंगल गाया। मीत साजन मेरे पहे सुहेले, प्रभ पूरा गुरु मिलाया। सखी सहेली पहे आनंदा, गुर कार्य हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुखदाता, छोड़ ना जाई दूरे। मलार महला पंजवा राज ते कीट, कीट ते सुरपत, कर दोख जठर कौ भरते। कृपा निध छोड़ आन कौ पूजै, आत्म काती हरते। हर बिसरत ते दुख दुख मरते, अनक बार प्रमै बहु जोनी, टेक न काहू धरते रहाओ। त्याग स्वामी आन कौ बिचर चितवत, मूड मुग्ध खल खरते। कागर नाव लंघै कथ सागर, बिरथा कथत हम तरते। सेव बिरंच असुर सुर जेते, काल अग्न में जरते। नानक सरन चर

कीनो सब जग में, दया जियन में पायो, कंठ लाए अपने दास राखियो, ताती वाओ न लायो। अंगीकार कियो मेरे स्वामी, ब्रह्म पाओ मेट सुखायो, महा आनंद करो दास हर के, नानक विश्वास मन आयो। राग मलार महला पंजवां, चौपदे कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद गुरमुख दीसै ब्रह्म पसार, गुरमुख त्रै गुणियां विस्थार, गुरमुख नाद बेद विचार, बिन गुर पूरे कोर अंधार, मेरे मन गुर गुर करत सदा सुख पाई है, गुर उपदेश हर विसरे हर हृदय वस्यो, सास ग्रास अपना खसम त्याई है रहाओ। गुर के चरण में टोंबल जाओ, गुर के गुण अंदनित गाओ, गुर की धूड़ करो शनान, साची दरगह पाइए मान। गुर बोहिथ पवजल तारन हार, गुर पेटिया ना होए जोन अवतार, गुर की सेवा सो जन पाए, जा कहो कर्म लिखिया तुरे आए। गुर मेरी जीवन गुर आधार, गुर मेरी वर्तन गुर परवार, गुर मेरा खसम सतगुर सरनाई, नानक गुर पार ब्रह्म जाकी कीम ना पाई। मलार महला पंजवां, गुर के चरण हृदय वसाए, कर कृपा प्रभया मिलाए, अपने सेवको ले प्रभ लाए, ताकि कीमत कही ना जाए। कर कृपा पूर्ण सुविधा ते, तुमरी कृपा ते तू चित आवे, आठ पहरो तेरा रंग राते रहाओ। गावन सुन सब तेरा पहाना, हुक्म बूझे सो साई समाना, जब जब जीवे तेरा नाओ, तुझ बिन दूजा नाही थाओ, दुख सो करते हुक्म रजाए, पाने बख्स पाने दे सजाए। दुहा सिरिया का करता आप, कुर्बान जाई तेरे प्रताप, तेरी कीमत तू है जाने, तू आपे बूझे सुने आप वखाने। सेई भगत जो तुद पाने, नानक तिन कै सद कुर्बाने। मलार महला पंजवां, परमेश्वर होवा दयाल, मेघ वरसै अमृत तार, सगले जी जंत त्रिपतासे, कार्य आए पूरे रासे। सदा सदा मन नाम संभाल, गुर पूरे की सेवा पाया, ऐथे उथे निभै नाल रहाओ। दुख पन्ना पै पंजन हार, अपने जिया की कीती सार, राखण हार सदा मेहरबान, सदा सदा जाइए कुर्बान। काल गवाया करता आप, सदा सदा मन तिसनो जाप, दृष्ट तार राखे सब जंत, गुण गावो नित नित भगवंत। एको करता आपे आप, हर के भक्त जाने प्रताप, नावे की पैज रखदा आया, नानक बोले तिसका बोलाया। मलार महला पंजवां, गुरसरनाई सगल निदान, साची दरगह पाइए मान। ब्रह्म पाओ दुख दर्द सब जाए, सा संग सद हर गुण गाए। मन मेरे गुर पूरा सा लाहे, नाम निदान जपो दिन राती, मन चंदे फल पाए रहाओ। सतगुर जेवड़िया वरना कोए, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सोए। जन्म मरण दुख ते राखे, माया बिख फिर बहुन ना चाखे। गुर की महिमा कथन ना जाए, गुर परमेश्वर साचे नाए। सच संजम करनी सब साची, सो मन निर्मल जो गुर संगराची। गुर पूरा पाइए वडभाग, काम क्रोध लो मन ते त्याग। कर कृपा गुर चरण निवासे, कर कृपा गुर चरण निवास, नानक की प्रभ सच अरदास। राग मलार महला पंजवां, पड़ताल करती जाए को अंकार, सतगुर प्रसाद। गुर मनार प्रे दयार, स्यों रंग किया किनोरी सगल सिंगार, तजोरी सगल बेकार, ताप तो अस्थिर थिया रहाओ। ऐसे रे मन पाए कै आप गवाए कै, कर साधन स्यों संग, बाजे बजे मृदंग, अनाहद को कलरी,
राम नाम बोलै मधुर बैन अत सुहिया, ऐसी तेरे दर्शन की शोभ अति अपार प्रयामोग, तैसे ही संग संत बने भव उतार नाम पने, राम राम राम माल मन फेरते हर संग संगिया, जन नानक प्रियो प्रीतम थिया। मलार महला पंजवा, मन कने प्रमे बने उमकत रस चाले, प्रमिलबे की चाह रहाओ, त्रै गुण माई मोह आई, कहो बेदन काहे आने उपाव सगर किए, न दुख सा कैलाहे, पज सरन साधु नानका मिल गुण गोबिंद गाहे। मलार महला पंजवा, प्रेकी सोभ सुहावनी निकी, हाहा हूहु गंधर्व अपसरा, आनंद मंगल रस गावनी निकी रहाओ, तुनत ललत गुनग अनक पांत, बहुबिध रूप दिखावनी निकी, गिर तर थल जल पवन भरपुर, कट कट लालन छावनी निकी, साध संग रामैया रस पायो, नानक जाके पावनी निकी। मलार महला पंजवा, गुरप्रीत प्यारे चरण कमल हरे दे अंतर तारे, रहाओ दर्श सफलियो दर्श पेख्यो, गए किल बिख गए मन निर्मल उजियारे, बिसम बिसम बिसम पई, अड़ग कोट हरते नाम लई, गुर चरण मस्तक डार पही, प्रभ एक तू ही भगत टेक तुहारे, जन नानक शरण दुआरे। मलार महला पंजवा, बरस सरस आग्या होहे आनंद सगल भाग, रहाओ संत संगे मन पर फड़ै, मिल मेघ तर सुहाग, कन कोर प्रीत मोर चित चातरक बूंद ओर, ऐसो हर संगे मन मोहो त्याग माया तोहो, मिल संत नानक जागया। मलार महला पंजवा, गुण गोपाल गाओ नीत, राम नाम तार चीत रहाओ, छोड़ मान तज गुमान, मिल साधुआ कै संग, हर सिमर एक रंग मिट जाहे दोख मीत, पार ब्रह्म पहे दयाल, बिनस गए बिखै जंजाल, साज जना कै चरण लाग, नानक गावै गोविंद नीत। मलार महला पंजवा, कन गरजत गोविंद रूप, गुण गावत सुख चैन रहाओ, हर चरण सरन तरन सागर, तुन अनहता रस बैन, पथक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन, हर दर्स प्रेम जन नानक कर कृपा प्रभ दैन। मलार महला पंजवा, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल लाल रहाओ, प्राण नाथा नाथ सखे दीन दर्द निवार, हे समर्थ गम पूर्ण मोहे मया तार, अंधकूप महापयान नानक पार उतार। मलार महला पहला, अष्टपदियां कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, चकवी नैन नींद न चाहे बिन

गुर पावै प्रयो पाई, प्रयो नाले सद ही सच संगे नदरी मेर मिलाई। समय जियो जियो है सोई, घट घट रहा समाई, गुर प्रसाद कर ही प्रगासिया सहजे सह समाई। अपना काज सवारो आपे, सुखदाते गोसाई, गुर प्रसाद कर ही पिरपाया तौ नानक तप्त बुझाई। मलार महला पहला, जागत जाग रह गुर सेवा, बिन हर मैं को नाही, अनक जतन कर रहन ना पावे, आच काच ढर पाही। इस तन तन का कहो गर्भ कैसा, बिनस्त बार न लागे बवरे, हम मैं गर्भ खपे जग ऐसा रहाओ। जय जगदीश प्रभु रखवारे, राखे परखे सोई, जेती है तेती तुझ ही ते, तुम सरेवर ना कोई। जियो पाए जुगत हथ कीनी, आपे गुरमुख अंजन, अमर अनाथ सर्ब सिर मोरा, काल बेकाल परम पै खंजन। कागद कोट एहो जग है बपरो, रंगन चिहन चतराई, नानी सी बूंद पवन पत खोवै, जन्म मरै खिनताई। नदी उपकंठ जैसे कर तरवर, सरपन कर कर माही, उल्टी नदी कहां कर तरवर, सरपन डसै दूजा मन माही। गारड़ गुर ज्ञान ध्यान गुर बचनी, बिखिया गुरमत जारी, मन तन हेम पहे सच पाया, हर की भगत निरारी। जेती है तेती तुद जाचै, तू सर्व जिया दयाला, तुमरी शरण परे पत रखो, साच मिलै गोपाला। बांदी तंद अंध नहीं सूजै, बदक कर्म कमावै, सतगुर मिलै ता सूजस बूजस, सच मन ज्ञान समावै। निर्गुण देहे साच बिन साची, निर्गुण देहे साच बिन काची, मैं पूछो गुरे अपना, नानक सो प्रभु प्रभु दिखावै, बिन साचे जग सुपना। मलार महला पहला, चात्र कमीन जल ही ते सुख पावै, सारंग शब्द सुहाई। रैन बबीहा बोल्यो मेरी माई रहाओ, प्रे स्यो प्रीत ना उल्टै कबहूं, जोतै पावै साई। नींद गई हम मैं तन थाकी, सच मत हृदय समाई। रूखी बिरखी उडो भूखा, पीवा नाम सुभाई, लोचन तार ललता बिललाती, दर्शन प्या सिर जाई। प्रे बिन सिंगार करी, तेता तन तापै, कापरे अंग ना सुहाई। अपने प्यारे बिन एक खिन रह ना सका, बिन मिले नींद ना पाई। पिर नजीक ना बूझै बपड़ी, सतगुर दिया दिखाई। सहज मिलिया तब ही सुख पाया, तृष्णा शब्द बुझाई। कहो नानक तुझ ते मन मानिया, कीमत कहन ना जाई। मलार महला पहला, अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद अखली।

नाम पै पाए हृदय वसाही, गुर करनी सच बाणी, इंद वरसै तरत सुहावी, कट कट जोत समाणी, कालर बीजस दुरमत ऐसी, निगुरे की निशानी, सतगुर बाजो कोर अंधारा, डूब मोए बिन पानी, जो किश कीनो सो प्रभु रिजाए, जो तुर लिखिया सो मेटना ना जाए, हुक्मे बांधा कार कमाए, एक शब्द रचै सच समाए, चहो दिस हुक्म वरतै प्रभ तेरा, चहो दिस नाम पतालं, सब मैं शब्द वरतै प्रभ साचा, कर्म मिलै बयालं, जामन मरना दिसै सिर उबो, खुदया निंद्रा कालं, नानक नाम मिलै मन पावै, साची नदर रसालं, मलार महला पहला, मरण मुक्त गत सार ना जानै, कंठे बैठी गुर शब्द पछानै, तू कैसे आड़ फाथी जाल, अलख ना जा चरदै समाल, रहाओ एक जी कै जिया खाही, जल तरती बूढ़ी जल माही, सर्व जी की ये प्रतपानी, जब पकड़ी तब ही पछतानी, जब गल फास पड़ी अत पारी, ऊंडना सांके पंख पसारी, रस चूगे मन मुख गावार, फाती छूटे गुण ज्ञान विचार, सतगुर सेव टूटे जमकाल, हृदय साचा शब्द संभाल, गुरमत साची

मासो ही मासी उपजै मासो सबो साक सतगुर मिलै हुक्म बुझियै ताको आवै रास आप छुटे न छुटियै नानक बचन विनाश महला पहला। मास मास कर मूर्ख झगड़े ज्ञान ध्यान नहीं जाने कौन मास कौन साग कहावै किसमें पाप समाने गेंडा मार होम जग किए देवत्यां की बाणे मास छोड़ बैस नक पकड़ै राती मान सखाने फड़ कर लोका नो दिखलावै ज्ञान ध्यान नहीं सूझै नानक अंधे से क्यों कहियै नानक अंधे से ओ क्या कहियै कह न कह आबूजै अंधा सोए जे अंध कमावै तिस हृदय से लोचन नाही मात पिता की रक्त ने पन्ने मच्छी मास ना खाही। स्त्री पुरख है जानिस मेला उथे मंद कमाही मासो निम्मे मासो जम्मे हम मासे के पांडे ज्ञान ध्यान का सूझै नाही चतर कहा वह पांडे। बाहर का मास मंदा स्वामी घर का मास चंगेरा जी जंत सब मासो होए जी लया वासेरा अपख पख पख तज छोड़ै अंध गुरु जिन केरा मासो निम्मे मासो जम्मे हम मासे के पांडे। ज्ञान ध्यान कछ सूझै नाही चतर कहा वै पांडे। मास पुराणी मास कते भी चहजुग मास कमाना जज काज भी आहे सुहावै उथे मास समाणा। स्त्री पुरख निपजै मासो पातशाह सुल्ताना जे ओए दिसै नरक जांदे ता उनका दान ना लैणा देंदा नरक सुर्ग लैंदे देखो एह तिंगाणा आप न बूझै।

उत्तर पवन गन्ना तोवा आखे हाँ बहु विधाचा तोवै बहुत बेकारा एते रस छोड़ होवै सन्यासी नानक कह विचारा। पौड़ी हाउ क्या आखा एक जीव तेरा अंतरा कि नहीं पाया सच्चा शब्द विचार से तुझी माए समाया। एक भगवा वेसकर परम देवन सतगुर कर ना पाया दे दसंतर पव थके तुद अंदर आप लुकाया। गुर का शब्द तन है कर चान आप दिखाया अपना आप पछाणिया गुरमति सच समाया आवा गुण बजारिया बाजार जिनी रचाया। एक थिर सच्चा सलाहना जिन मन सच्चा पाया सलोक महला पहला नानक माया कर्म बिरख फल अमृत फल विस सब कारण करता करे जिस खवाले तिस महला दूजा। नानक दुनिया किया वड़िया अग्गी से तीजाल इनी जली ना विसारे आयक ना चलिया नाल। पौड़ी सिर सिर होए नबेड़ हुक्म चलाया तेरे हथ नबेड़ तू है मन पाया। काल चलाए बन कोई ना रखसी जर जरवाणा कन चढ़िया नचसी सतगुर बोथ बेड़ सच्चा रखसी अगन पखे पड़हार अंदर पक्षी फाथा चुगै चोग हुक्मी छुटसी करता करे सहोग कून निखुटसी। सलोक महला पहला घर मैं घर दे खाए दे सो सतगुर पुरख सुजान पंच शब्द तुन कार तुन तह बाजै शब्द निशान। दीप लो पाताल तह खंड मंडल हैरान तार कोर बाजंतर तह साज तख्त सुल्तान। सुख मन कै कर राग सुन सुन मंडल लिव लाए कथ कथा बिचारी है मनसा मन समाए। उल्ट कमल अमृत भरिया एहो मन कतो ना जाए अजप्पा जापना विसरै आज जुगा समाए। सब सखियां पंचे मिले गुरमुख निज करवास शब्द खोजे हो कर लहै नानक ताका दास। महला पहला चिल मिल बिसियार दुनिया फानी कालूब अकल मन गोर ना मानी मन कमीन कम तरीन तूंदरिया खुदाया। एक चीज मुझै देह अवर जहर चीज ना पाया पुराब खाम कूजै हिकमत खुदाया। मन तो आना तू कुदरती आया सग नानक दीबान मस्ताना नित चढ़े सवाया आतस दुनिया खुनक नाम खुदाया। पौड़ी नवी महला पंजवा सबो वरतै चलत चलत वखाणिया पार ब्रह्म परमेसर गुरमुख जाणिया। लथे सब विकार शब्द नी साणिया साधु संग उदार पहे निकाणिया। सिमर सिमर दा तार सब रंग माणिया प्रगट पया संसार मेहर शावाणिया। आपे बख्स मिलाए सद कुरबाणिया नानक लय मिलाए खसमै पाणिया। सलोक महला पहला तन सो कागद कलम तन तन भांडा तन मस तन लेखारी नानका जिन नाम लिखाया सच। महला पहला आपे पट्टी कलम।

हमरे हर प्राण सखा स्वामी हर मीता, मेरे मन तन जी हर हरे, हरे राम नाम तन माल, जाको भाग तिन लियो री सुहाग, हर हर हरे हरे गुण गावे गुरमत, हौ बलबले हौ बलबले, जन नानक हर जप पही, निहाल निहाल निहाल, कानड़ा महला चौथा, हर गुण गावो जगदीश, एका जी कीचे लख बीस, जप हर हर शब्द जपीस, हर हो कृपीस रहाओ, हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा, हर जप जपे जप जपो जगदीश, तुमरे जन राम जपे ते उत्तम, तिन कहो हाँ कुम कुमे कुम कुम जीस, हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे, सो करे जे तुद पावीस, जन नानक अमृत पिया गुरमती, तन तन तन तन तन गुरु साबीस, कानड़ा महला चौथा, पज राम मन राम, जिस रूप ना रेख वडाम, सतसंगत मेल पज राम, बड हो पाग मथाम रहाओ, जित ग्रह मंदर हर होत जास, तित कर आनंदो आनंद, पज राम राम राम, राम नाम गुण गावो हर प्रीतम, उपदेश गुरु गुर सतगुरा, सुख होत हर हरे हर हरे, हरे पज राम राम राम, सब सिष्ट तार हर तुम कृपाल करता, सब तू तू तू राम राम राम, जन नानको शरणागति देहो गुरमति, पज राम राम राम, कानड़ा महला चौथा, सतगुर चट पग चाट, जित मिल हर पादर बाट, पज हर रस रस हर गाट, हर हो लिखे लिलाट रहाओ, खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्थार, सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट, कर पेख ना पाईए हर ब्रह्म जोग हर पाईए, सतसंगति उपदेश गुरु गुर संत जना, गुर खोल खोल कपाट, तू अपरंपर स्वामी आता गाहा, तू परपुर रया जल थले, हर एक एको एक एक है हर थाट, तू जाने सब विद बूझे आपे, जन नानक के प्रभ कट कटे कट कटे, कट हर काट, कानड़ा महला चौथा, जप मन गोविंद माधो, हर हर आगा दो, मत गुरमत हर प्रवला दो, तुर हो लिखे लिला दो रहाओ, बिख माया संच बहु चित बिकार, सुख पाइये हर पज संत संत संग दी, मिल सत गुरु गुर साधो, ज्यो शोहे पारस मनूर पए कंचन, त्यो पतत जन मिल संगति, सुध होवत गुरमती सुधा दो, ज्यो काष्ट संग लोहा बहुतरता, त्यो पापी संग तरे, साध साध संगति, गुर सतगुरु गुर साधो, चार वर्ण चार आश्रम है, कोई मिले गुरु गुर नानक, सो आप तरे कुर सगल तरा दो, कानड़ा महला चौथा, हर जस गावो भगवान, जस गावत पाप लहान, मत गुरमत सुन जस कान, हर हो कृपान रहाओ, तेरे जन त्यावै एक मन एक चित, ते साधु सुख पावै, पज हर हर नाम निधान, उस्तत करह प्रभ तेरिया, मिल साधु साजना गुर सतगुरु भगवान, जिनके हृदय तू स्वामी, ते सुख फल पावै, ते तरे पव सिंध, ते भगत हर जान, तिन सेवा हम लाए हरे, हम लाए हरे, जन नानक के हर

दर्शन प्यास बहुत मन मेरा, मिल नानक देव जगत गुर के रै। कानड़ा महला पंजवां, ऐसी कौन विदे दर्शन परसना रहाओ। आस प्यास सफल मूर्त उमग ही ओ तरसना, दीन लीन प्यास मीन संतना हर संतना। हर संतना की रेन ही ओ अर्प देन, प्रभ पय है कृपेन। मान मोह त्याग छोड़ आओ तो नानक हर जियो भेटना। कानड़ा महला पंजवा, रंगा रंग रंगन के रंगा, कीट हस्त पूर्ण सब संगा रहाओ। बर्त नेम तीर्थ सहत गंगा, जल हेवत भूख हर नंगा। पूजा चार करत में लंगा, चक्कर कर्म तिलक खाटंगा। दर्शन भेटे बिन सतसंगा, हठ निगरह अत रहत बिटंगा। हाँ रोग ब्यापै चुकै न पंगा, काम क्रोध अत तृष्ण जरंगा। सो मुक्त नानक जे सतगुर चंगा। कानड़ा महला पंजवा, कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तिख बूझ गई गई मिल साध जना, पंच भागे चोर सहजे सुखैनो। हरे गुण गावती गावती गावती दर्स प्यार रहाओ। जैसी करी प्रभ मोसियो मोसियो, ऐसी हो कैसे कराओ। हियो तुम्हारे बलबले बलबले बल गई, पहले पै संत पाए। त्याए त्याए प्रीत लाए, प्रभ थान थे रोके हरो। जित जंतन कर विचार, अनक दास कीर्त करे तुहारी। सोई मिलियो जो भाव तो, जन नानक ठाक रहो समाए। एक तू ही तू ही तू ही। कानड़ा महला पंजवा, कर अठवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। त्यागी है गुमान मान, पेखता दयाल लाल। हां हां मन चरण रेन रहाओ। हर संत मंत गोपाल ज्ञान ध्यान, हृदय गोबिंद गाए। चरण कमल प्रीत लाए, दीन दयाल मोहना। कृपाल दया मया तार, नानक मांगे नाम दान। तज मोह परम सगल अभमान। कानड़ा महला पंजवा, प्रभ कहन मलन दहन लहन। गुर मिले आन नहीं उपाओ रहाओ। तटन खटन जटन होमन, नाही दंड धार सुवाओ। जतन पांतन तपन भ्रमन, अनक कथन कथते नहीं था पाई ठाओ। सोध सगर सोधना सुख नानका भजनाओ। कानड़ा महला पंजवा, करनावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पतत पावन भगत पवचल, पै हरन तारन तरन रहाओ। नैन तिपते दर्श पेख, जस तोख सुनत करन। प्राण नाथ या नाथ दाते, दीन गोबिंद सरन। आस पूर्ण दुख बिनासन, गही ओट नानक हर चरण। कानड़ा महला पंजवा, चरण सरन दयाल ठाकर। आन नाही जाए, पतत पावन बिरद स्वामी। उधर ते हर त्याए रहाओ। संसार गार बिकार सागर, पतत मोह मान अंध। बिकल माया संग तंद, कर गह प्रभ आप काढ़ो। राख लियो गोबिंद राय, अनाथ नाथ सनाथ संतन। कोट पाप विनाश, मन दर्शन की प्यास। प्रभ पूर्ण गुणतास, कृपाल दयाल गोपाल नानक। हर रसना गुण गाए। कानड़ा महला पंजवा, वार वारो अनक डारो। सुख प्रे सुहाग पलक रात रहाओ। कनक मंदर पाठ सेज सखी, मोहे नाहे इनस्यों तात। मुक्त लाल अनक भोग, बिन नाम नानक हाथ। रूखो भोजन भूम सैन सखी, प्रे संग सुख बिहात। कानड़ा महला पंजवा, अहं तोरो मुख जोरो। गुर गुर करत मन लोरो, प्रे प्रीत प्यारो मोरो रहाओ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸੇ ਸੁਹਾਵੀ ਆਂਗਨ ਚੈਨਾ ਤੋਰੋ ਰੀ ਤੋਰੋ ਪੰਚ ਦੂਤਨ ਸਿਉ ਸੰਗ ਤੋਰੋ ਆਏ ਨਾ ਜਾਏ ਬਸੇ ਨਿਜ ਆਸਨ ਊਂਦ ਕਮਲ ਬਿਗਸੋਰੋ ਛੁਟਕੀ ਹਉ ਮੈਂ ਸੋਰੋ ਗਾਇਓ ਰੀ ਗਾਇਓ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਗੁਨੀ ਗਹਿਰੋ ਕਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੇ ਜਾਪ ਮਨਾ ਹਰ ਜਾਪ ਜੋ ਸੰਤ ਬੇਦ ਕਹਿਤ ਪੰਥ ਗਾਖਰੋ ਮੋਹ ਮਗਨ ਅਹੰਤਾਪ ਰਹਾਉ ਜੋ ਰਾਤੇ ਮਾਤੇ ਸੰਗ ਬੱਪਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸੰਤਾਪ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੋ ਜਨ ਉਧਰੈ ਜਿਸੈ ਉਧਾਰੋ ਆਪ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਮੋਹ ਪੈ ਪਰਮਾ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਦਸਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸੋ ਦਾਨ ਦੇਹੋ ਜੀ ਸੰਤੋ ਜਾਤ ਜੀਉ ਬਲਿਹਾਰ ਮਾਨ ਮੋਹੀ ਪੰਚ ਦੋਖੀ ਉਰਜ ਨਿਕਟ ਬਸਿਓ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਨ ਸਾਧੂਆ ਦੂਤ ਸੰਗ ਨਿਵਾਰ ਰਹਾਉ ਕੋਟ ਜਨਮ ਜੋਨ ਪ੍ਰਮਿਓ ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਦੁਆਰ ਕਿਰਪਾ ਗੋਬਿੰਦ ਭਈ ਮਿਲਿਓ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਦੁਲਭ ਜਨਮ ਸਫਲ ਨਾਨਕ ਭਵ ਉਤਾਰ ਪਾਰ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਗਿਆਰਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਆਪਣੇ ਆਏ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਨੋ ਕਛੂ ਦਿਖਾਏ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਓ ਸੁਖ ਬਾਲੇ ਭੋਲੇ ਰਹਾਓ ਸੰਯੋਗ ਮਿਲਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗਾਏ ਕਥੂ ਨਾ ਜਾਏ ਕਰੈ ਬਸਾਏ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਇਹ ਚੋਲੈ ਚਰਨ ਲੁਭਾਏ ਅੰਤ ਜਾਏ ਥਾਂ ਥਨ ਆਏ ਸਰਬ ਸਮਾਏ ਰਸਕ ਰਸਕ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਬੋਲੈ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਠਾਕਰ ਮਿਲਨ ਦੁਰਾਈ ਪਰਮਿਤ ਰੂਪਾ ਗਾਮਾ ਗੋਚਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬ ਸਮਾਈ ਰਹਾਓ ਕਹਿਣ ਭਵਨ ਨਾਹੀ ਪਾਇਓ ਪਾਇਓ ਅਨਕ ਉਕਤ ਚਤਰਾਈ ਜਤਨ ਜਤਨ ਅਨਕਿਓ ਪਾਵਰੇ ਤਉ ਮਿਲਿਓ ਜਉ ਕਿਰਪਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਰ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਰੇ ਨਾਈ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਈ ਸਿਮਰਤ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ

कर कृपा मिले परमानंदा प्रमिले स्वामी सुखैगामी इच्छा इच्छ मन की पुनिया बजी बधाई सहजे समाई बहुत दुख न रुनिया लेकंठ लाए सुख दे कहाए।

अन जम्या खेती भाव कर हर नाम समारे जन नानक मंगे दान प्रभ हर नाम आधारे पौड़ी इच्छा मन की पूरी है जपिए सुख सागर हर के चरण आराधी है गुर शब्द रतनागर मिल साधु संग उधार होए फाटे जमकागर जन्म पदार्थ जीती है जप हर बैरागर सब पवो शरण सदगुरु की बिनसै दुख दागर श्लोक महला चौथा हाउ ढूंढेंदी सज्जना सज्जन मैंड नाल जन नानक लख ना लखी है गुरमुख दे देखाल महला चौथा नानक प्रीत लाई तिन सच्चै तिस बिन रहन ना जाई सतगुर मिलै ता पूरा पाई है हर रस रसन रसाई पौड़ी कोई गावै को सुनै को चुर सुनावै जन्म जन्म की मल उतरै मन चिंदिया पावै आवन जाना मेटिए हर के गुण गावै आप तरह संगीत राहे सब कुटुंब तरावै जन नानक तिस बर हारणै जो मेरे हर प्रभावै सुध राह कानला बाणी नाम देव जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद ऐसो राम राय अंतर जामी जैसे दर्पण माहे बदन परवानी रहाओ बसै कटा कट लीप ना शीपै बंधन मुक्ता जात ना दिसै पानी माहे देख मुख जैसा नामे को स्वामी बीठ ले ऐसा राह कल्याण महला चौथा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाओ निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद रामा राम रामा अंत ना पाया हम बारक प्रतपारे तुमरे तू बड़ पुरख पिता मेरा माया रहाओ हर के नाम असंख अगम है।

सुरत बहु कीनी, एक तिल नहीं कीमत पाया। गोबिंद गुण गोबिंद सद गावै, गुण गोबिंद अंत ना पाया। तू अमित अतोल अपरंपर, स्वामी बहु जपिया था ना पाया। उस्त करै तुमरी जन मादो, गुण गावै हर राया। तुम जल निधा मीने तुमरे, तेरा अंत ना कतहु पाया। जन कहो कृपा करो मधुसूदन, हर देवो नाम जपाया। मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है, जन नानक गुरमुख पाया। कल्याण महला चौथा, हर जन गुण गावत हसया। हर हर भगत बनी मत गुरमत, तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया रहाओ। गुर के पग सिमरो दिन राती, मन हर हर हर बसया। हर हर हर कीर्त जग सारी, कस चंदन जस कसया। हर जन हर हर हर लिवलाई, सब साक्त खोज पया। जो किरत संजोग चलियो नर निंदक, पग नागन शोहे जलिया। जन के तुम हर राखे स्वामी, तुम जुग जुग जन रखिया। कहां पया दैत करी बखीली, सब कर कर चर परया। जेते जी जंत प्रभ किए, सब काल मुख ग्रसिया। हर जन हर हर हर प्रभ राखे, जन नानक शरण पया। कल्याण महला चौथा, मेरे मन जप जप जगन्नाथे। गुर उपदेश हर नाम ते आयो, सब किल विख दुख लाथे रहाओ। रसना एक जस गाए ना साकै, बहु कीजै बहु रसन थे। बार बार खिन पल सब गावै, गुण कह ना सक।

रस रसक गटक नित पीजै बसदा सबत दीप है सागर कड कंचन करत रीजै मेरे ठाकर के जन इनो ना बांचै हर मांगै हर रस दीजै साकत नर प्राणी सत भूखे नित भूखन भूख करीजै धावत ताए ताव है प्रीत माया लख कोसन कौ बिथ दीजै हर हर हर हर हर जन उत्तम क्या उपमा तिन दीजै राम नाम तुल और ना उपमा जन नानक कृपा करीजै कल्याण महला चौथा राम गुरपारस परस करीजै हम निर्गुणी मनूर यत फीके मिल सतगुर पारस की जय रहाओ स्वर्ग मुक्त बैकुंठ सब बांछ नित आसा आस करी जय हर दर्शन के जन मुक्त ना मांगे मिल दर्शन तृप्त मन तीजै माया मोह सबल है भारी मोह कालख दाग लगी जय मेरे ठाकर के जन अलिप्त है मुक्ते ज्यो मुर्गाई पंख ना पीजै चंदन वास भयंगम वेड़ी क मिलिए चंदन लीजै काड खड़ग गुर ज्ञान करारा बिक्षेद शेद रस पीजै आन आन समदा बहुकीनी पल बैसंतर पसम करी जय महायुगर पाप साक्त नरकीने मेरे साधु लुकी दी जय साधु साधु साजनी के जनंतर नाम तरी जय परस निपरस पय साधु जन जन हर भगवान दखी जय साक्त सूत बहु गुरुजी भरिया क्यों कर तंत नी जय तंत सूत किशनिक सह नाही साक्त संग ना कीजै सतगुर साध संगत है नेकी मिल संगत राम रवीजै अंतर रतन जिवे हर माणक गुर कृपा ते लीजै मेरा ठाकर वड्डा वड्डा है स्वामी हम क्यों कर मिले मिलीजै नानक मेल मिलाए गुरपूरा जन को पूर्ण दीजै कल्याण महला चौथा रामा राम राम राम रविजय साधु साधु साजनी के मिल साधु हर रंग की जय रहाओ जी जंत सब जग है जेता मन डोलत डोल करी जय कृपा कृपा कर साध मिलावो जग थम्मन कौ थम दी जय बसदा तला तला सभी ऊपर मिल साधु चरण रुली जय अति उत्तम होवो सब श्रेष्ठ चरण तल दी जय गुरमुख जोत भली सिवनी की आन पानी सख्त भरी जय मैन दंत निकसै गुरबचनी सार चब चब हर रस पी जय राम नाम अन गुरो बहु किया गुर साधु पुरख मिली जय गुण राम नाम बिन सिरन की है हर सगल भवन जस दी जय साधु साधु साध मन प्रीतम बिन देखे रह ना सकी जय ज्यों जल मीन जलंग जल प्रीत है खिन जल बिन फूट मरी जय

जागत बिकसै मूठो अंधा गल फाही सिर मारे तंदा आसा आवै मन सा जाए उर्जी ताणी किशना बसाए। जागस जीवन जागणहारा सुख सागरे अमृत भंडारा रहाओ कहो ना बूझै अंधना सूझै पूंडी कार कमाई आपे प्रीत प्रेम परमेसर करमी मिले वडाई। दिन दिन आवै तिल तिल शीजै माया मोह कटाई बिन गुर बूढ़ो ठौर ना पावै जब लग दूजी राई। अहनस जिया देख संभाले सुख दुख प्रब कमाई कर्महीन सच भीखिया मांगै नानक मिले वडाई। प्रभाती महला पहला मस्त करो मूर्ख जग कहिया।

कर कृपा अपने प्रभ की है, हर का नाम जपन कौ दी है। आठ पहर गुण गाए गोबिंद, पै बिन से उतरी सब चिंद। उबरे सतगुर चरनी लाग, जो गुर कह सोई पल मीठा। मन की मत त्याग रहाओ, मन तन वस्या हर प्रभ सोई। कल कलेश विघन ना होई। सदा सदा प्रभ जी कै संग, उत्तरी मैल नाम कै रंग। चरण कमल से लागो प्यार, बिन से काम क्रोध हंकार। प्रभ मिलन का मार्ग जाना, पाए भगत हर से मन माना। सुन सज्जन संत मीत सुहेले, नाम रतन हर अगे अतोले। सदा सदा प्रभ गुण निध गाई है, कहो नानक वड भागी पाई है। प्रभाती महला पंजवां, से धनवंत से ही सच साहा। हर की दरगह नाम विसाहा, हर हर नाम जपो मन मीत। गुरपुरा पाई वड भागी, निर्मल पूर्ण रीत रहाओ। पाया लाभ वजी वधाई, संत प्रसाद हर के गुण गाई। सफल जन्म जीवन परवान, गुरप्रसादी हर रंग मान। बिन से काम क्रोध अहंकार, नानक गुरमुख उत्तर सपार। प्रभाती महला पंजवां, गुरपुरा पूरी तां की कला। गुर का शब्द सदा सद अटला, गुर की बाणी जिस मन वसै। दुख दर्द सब तां का नसै, हर रंग राता मन राम गुण गावै। मुक्तो साधु तुहरी नावै रहाओ। गुरप्रसादी उतरे पार, पाओ परम बिन से बेकार। मन तन अंतर बसे गुर चरना, निरपै साध परे हर सरना। आनंद सहज रसूक नेरे, दुश्मन दुख ना आवै नेरे। गुरपुरै अपने कर राखे, हर नाम जपत किलबिख सब लाथे। संत साजन सिख पए सुहेले, गुरपुरै प्रभ सिउ लै मेले। जन्म मरण दुख पहा काटिया, कहो नानक गुर पड़दा ढाकिया। प्रभाती महला पंजवां, सतगुर पूरे नाम दिया। आनंद मंगल कल्याण सदा सुख, कार्ज सगला रास्थिया रहाओ। चरण कमल गुर के मन उठे, दुख दर्द प्रभ बिन से झूठे। नित उठ गावो प्रभ की बाणी, आठ पैरार सिमरो प्राणी। घर बाहर प्रभ सबनी थाई, संग सहाई जय हो जाई। दोय कर जोड़ करी अरदास, सदा जपे नानक गुणतास। प्रभाती महला पंजवां, पार ब्रह्म प्रभ सूढ़ सुजान। गुरपुरा पाईए वडभागी, दर्शन कौ जाइए कुरबान रहाओ। किल बिख मेटे शब्द संतोख, नाम आराधन होवा जोग। साध संग होवा प्रगास, चरण कमल मन माए निवास। जिन किया तिन लिया राख, प्रभ पूरा अनाथ का नाथ। जिसे नवाजे कृपा।

अमृत नाम नारायण नानक पीवतंग संतना तृपते। सहनशील संतंग सम मित्रस दुर्जन नानक भोजन अनक प्रकारेण निंदक आवद होए उपतिष्ठते। तिरस्कार नह पवंत मान भंगन शोभाहीन नह पवंत नह पोहंत संसार दुखन। गोविंद नाम जपंत मिल साध संग नानक से प्राणी सुख बसन। सैना साध समूह सूरज तंग सन्नाहं तन निमरता आवदे गुण गोविंद रमणं ओट गुर शब्द कर चरमण। आरूढ़ ते अश्वरथ नागे बुजंते प्रमार गए विचरते निरपयं सत्र सैना तायंते गोपाल कीर्तन। जितते विश्व संसार नानक वस्यं क्रोध पै तस्कर। मृग तृष्णा गंधर्व नगरं द्रुम छाया रच दुर्मत ततः कुटाम्ब मोह मिथ्या स्मरंत नानक राम राम नाम। नच विद्या निदान निगमं नच गुणग नाम कीर्तन। नच राग रतन कंठं नह चंचल चतर चतर। भाग उद्यम लभद्यंग माया नानक साह संग खल पंडित। कंठ रमणी राम राम माला हस्त ऊच प्रेम तारणी जी पणिजो उत्तम सलोक उदरनंग नैन नंदनी। गुरमंत्र ही नस जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रष्टन। कुकरै सुकरै गर्भ दै काकै सर्पनै तुल खलै चरणार बिंद भजनं हृदयंग नाम धारण। कीर्तनंग साध संगे नानक नह दृष्टांत जमदूतन। नच दुर्लभं धनं रूपं नच दुर्लभं स्वर्ग राजन। नच दुर्लभं भोजनं व्यंजनं नच दुर्लभं स्वच्छ अंबर। नच दुर्लभं सुत मित्र प्रात बांधव नच दुर्लभं बंता बिलास। नच दुर्लभं विद्या प्रवीणं नच दुर्लभं चतर चंचल। दुर्लभं एक भगवान नामे नानक लभद्यं सा संग कृपा प्रभं। जत कतै ततै दृष्टं स्वर्ग मर्त पयाल लोकै सर्वत्र रमणं गोविंदै नानक लेप शेप ना लिप्यते। बिखिया पयंत अमृतं दृष्टा सखा स्वजनै दुखं पयंत सुखियं पै पी पंत निर्भय। थान बिहून विश्राम नामं नानक कृपाल हर हर गुरै। सर्वशील ममंगशीलं सर्व पावन मम पावन। सर्व कर्तव ममं कर्ता नानक लेप शेप ना लिप्यते। नह शीतलं चंद्र देव नह शीतलं बामन चंदन। नह शीतलं शीत रुतेण नानक शीतलं सास्वजन। मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण। ज्ञानं सम दुख सुखं युक्त निर्मल निर्वैरण। दयालं सर्वत्र जिया पंच दुख विवर्जित। भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहित। उपदेशं सम्मित्र सत्र है भगवंत भगत पावनी। पर निंदा न स्रोत श्रवणं आप त्याग सगल रेण कै। खट लखन पूर्णं पुरख है नानक नाम साध स्वजन। अजा पोगंत कंद मूलं बसंते समीप केहर। तत्रगते संसार नानक सो घरखं व्यापते। छलं शद्रं कोट बेगनं अपराधं किल बखमलं। परम मोहं मान अपमानं मदंग माया व्यापतं। मृत्यो जन्म प्रमंत नरक अनक उपावं न सिद्ध्यते। निर्मलं साध संग है जपंत नानक गोपाल नामं। रमंत गुण गोविंद नित प्रत।
तरन सरन स्वामी रमणशील परमेश्वर है, करण कारण समर्थ है, दान देत प्रपूर्ण है, निराश आस करणं सगल अर्थ आले है, गुण निधान समरंत नानक सगल जाचंत जाचक है, दुर्गम स्थान सुगमं महादुख सर्व सुखण है, दुर्वचन भेद परमं साकत फसनंत सुरजन है, अस्थतं सोगहरखं पै खीणंत निर्भव पै अटवियं महानगर वासं धर्म लखण ब्रह्मया, साध संगम राम राम रमणं शरण नानक हर हर दयाल चरणं, हे अजित सूर संग्रामं अत बल ना बो मर्दन है, गण गंधर्व देव मानुख्यं पशपंखी बेमोहन है, हर करण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वर है, हे कामं नरक विश्रामं बहुजोनी प्रमावण है, चित हरणं त्रैलोक गम्यं जप तपसील विदारण है, अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समावण है, तव पै विमुंचत साध संगम ओट नानक नारायण है, हे काल मूल क्रोधं कदंच करनाना उपर्जते बिखयंत जीवं वस्यं क्रोत निरत्यं क्रोत जथा मरकट है, अनक शासन ताड़ंत जम दूत है, तव संगे अदमं नर है, दीन दुख पंजन दयाल प्रभ नानक सर्व जी रखिया करोत, हे लोबा लंपट संग सिर मोर है, अनक लहरी कलोलते तावंत जिया बहु प्रकारं अनक भांत बहु डोलते, नच मित्रंग नच हिष्टंग नच बांधव नच मात पिता तव लज्जिया, अकरण क्रोत अखाद खाद्यं असाजिंग साज समझिया, त्राहे त्राहे शरण स्वामी विज्ञापत नानक हर नर हर है, हे जन्म मरण मूलं हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा मित्रं तजंत सत्रंग दृढ़ंत, अनक माया विस्तीर्ण है आवंत जावंत थकंत जिया, दुख सुख वो बहुगण है, परम प्यान उद्यान रमणं महाविकट असाध रोगण है, वैद्यं पार ब्रह्म परमेश्वर आराध नानक हर हर हरे, हे प्राणनाथ गोविंद है कृपा निधान जगत गुरो, हे संसार ताप हरण है करुणा मैं सब दुख हरो, हे शरण योग दयाल है दीनानाथ मया करो, शरीर स्वस्थ खीण समय समरंत नानक राम दामोदर माधव है, चरण कमल शरणं रमणं गोपाल कीर्तन है, साध संगेन तरणं नानक महासागर पैदुत्तर है, सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं हस्तकाया रखिया परमेश्वर है, आत्म रखिया गोपाल स्वामी तन चरण रखिया जगदीश्वर है, सर्व रखिया गुरदयाल है पै दुख विनाशन है, भगत वछला नाथ नाथे शरण नानक पुरखा चुत है, जैन कला तारियो आकाशं बैसंतरं काष्ट बेष्टं जैन कला ससूर नक्षत्र ज्योतियं सासं श्रीर तारणं जैन कला मात गर्भ प्रतिपालं नैश जंत जठर रोगण तेन कला अस्थंबं सरोवरं नानक नैश जंत तरंग तोयण गुसाई गृष्ट रूपेण सिमरणं सर्वत्र जीवन लब्धं संत संगेण नानक स्वच्छ मार्ग हर भगतन मस्कं पगनंत सैलं कर्दमं तरंत पपील कै सागरं लंघंत पिंगं तम प्रगास अंध कै साध संगेण स्मरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरे, तिलकहीणं जथा विपरा अमरहीणं जथा राजन आवदहीणं जथा सूरा नानक धर्महीणं तथा वैष्णव है, ना शंखं ना चक्रं ना गदा ना श्यामं आश्चर्य रूपं अरहंत जन्मं नेत नेत कथंत वेदा ऊंच मूचा पार गोविंद है, बसंत साध हृदयं अचत बुझंत नानक वडभागी है, उद्यान बसनं संसारं संबंधी स्वान स्याल खरै बिखम स्थान मन मोह मदरंग महा असाध पंच तस्कर है, हीत मोह पै परम परमणंग अहू फांस दीखण कठन है, पावक तो असाध कोरंग अगम तीर नय लंगन है,
ਪਜ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੋਪਾਲ ਨਾਨਕ ਹਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਉਧਰਨ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੰਤ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਹੈ ਸਗਲਿਆਂ ਰੋਗ ਖੰਡਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਗੁਣ ਰਮਤ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਸਿਆਮਲੰਗ ਮਦਰ ਮਾਨੁਖ ਅੰਗ ਹਿਰਦਯੰਗ ਭੂਮ ਵੈਰਣ ਹੈ ਨਿਵੰਤ ਹੋਵੰਤ ਮਿਥਿਆ ਚੇਤਨੰ ਸਮੰਤ ਸਵਜਨ ਅਚੇਤ ਮੂੜਾ ਨਾ ਜਾਣੰਤ ਘਟੰਤ ਸਾਸਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੇਸ਼ ਜੰਤ ਮਹਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਇਆ ਕਾਲ ਕੰਨਿਆ ਗ੍ਰਾਸਤੇ ਹਰਚੰਤ ਪੁਰਖ ਹੈ ਕੁਟੰਬ ਲੀਲਾ ਅਨਿਤ ਆਸਾ ਵਿਖਿਆ ਬਿਨੋਦ ਪ੍ਰਮੰਤ ਪ੍ਰਮੰਤ ਜਨਮ ਹਾਰਿਓ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾਮਯ ਹੇ ਜਿਹਬੇ ਹੇ ਰਸਗੇ ਮਦਰ ਪ੍ਰਿਆ ਤੋਯੰ ਸਤ ਹਤੰਗ ਪਰਮ ਬਾਦੰਗ ਅਵਰਤ ਇਥੈ ਸੁਧ ਅਛਰਣ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਮੋਦਰ ਮਾਧਵੇ ਗਰਬੰਤ ਨਾਰੀ ਮਦੋਨ ਮਤੰ ਬਲਵੰਤ ਬਲਾਤ ਕਾਰਣ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਹਿ ਭਜੰਤ ਤਰਨ ਸਮਾਨ ਤ੍ਰਿਗ ਜਨਮਨ ਹੇ ਪਪੀਲ ਕਾ ਗ੍ਰਹਟੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਤੋਯੰਗ ਧਨੇ ਨਾਨਕ ਅਨਕ ਬਾਰ ਨਮੋ ਨਮੈ ਤ੍ਰਿਣੰਗ ਤਾ ਮੇਰੰਗ ਸਹਿਕੰਗ ਤਾ ਹਰਿਯੰ ਬੂਡੰਗ ਤਾ ਤਰਿਯੰ ਊਣੰਗ ਤਾ ਭਰਿਯੰ ਅੰਧਕਾਰ ਕੋਟ ਸੂਰ ਉਜਾਰੰਗ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਰ ਦਯਾਰੰਗ ਬ੍ਰਹਮਣ ਸੰਗ ਉਦਰਣੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਜੇ ਪੂਰਨ ਆਤਮ ਰਤੰ ਸੰਸਾਰ ਗਹੰ ਤੇ ਨਰ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲੈ ਪਰ ਦਰਬ ਹਿਰਣੰ ਬਹੁ ਵਿਘਨ ਕਰਨੰ ਉਚਰਣੰ ਸਰਬ ਜੀ ਕੈ ਲਾਉ ਲਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤਿਪਤ ਮਨ ਮਾਏ ਕਰਮ ਕਰਤ ਸਾਸੂ ਕਰੈ ਮਤੇ ਸਮੇ

खंडन है। गशेण नैन पारेण नानक बिना साधु ना सिद्ध्यते। जानो सत होवंतो मरनो दृष्टेण मिथ्या। कीर्त साथ चलंथो पढ़ंत नानक साध संगेण। माया चित परमेण इष्ट मित्रेख बांधव। लब्ध्यंग साध संगेण नानक सोख्या स्थानं गोपाल भजनं। लब्ध्यंग साध संगेण नानक सुख अस्थानं गोपाल भजनं। मैलागर संगेण निम बिरख से चंदन। निकट बसंतो बांसो नानक अहं बुद्ध ना बोहते। गाथा गुम्फ गोपाल कथं मथं मान मर्दन। हतं पंच सत्रेण नानक हर बाणे परहारण। बचन साध सुख पंथा लहंथा बड़ कर्मण। अरहंता जन मरणेन रमणंग नानक हर कीर्तन। पत्र पुर जेण चढ़ियंग नह जड़ियंग पेड़ संपता। नाम बिहून बिखमता नानक बहंत जोन बसरो रैणी। पावनी साध संगेण लबंतंग बड़ पागण। हर नाम गुण रमणंग नानक संसार सागर ने व्यापण। गाथा गूढ़ अपारंग समझणंग बिरला जन। संसार काम तजणंग नानक गोबिंद रमणंग साध संग में। सुमंत्र साध बचना कोट दोख बिनासन। हर चरण कमल ध्यानंग नानक कोल समूह उदाहरण। सुंदर मंदिर सैण जेण मद हर कीर्तन। मुक्ते रमण गोविंद नानक लभद्यंग बड़ भागण। हर लभदो मित्र सुमितो बिदारण कदे ना चित्तो। जा का अस्थल तोल अमितो सोई नानक सखा जी संग कितो। अबज संग मिटंत सत पुत्र है सिमरतब हृदय गुरमंत्रण। प्रीतम भगवान अच्युत नानक संसार सागर तारण। मरणंग बिसरणंग गोविंद जीवणंग हर नाम त्यावण। लबणंग साध संगेण नानक हर पूर्व लिखण। दसन बिहून पुयंगंग मंत्रंग गारड़ी निवारंग। व्याद्योपण संतंग नानक लब्ध कर्मण। जाथ कथ रमणंग सरणंग सर्वत्र जियण। तथ लगणंग प्रेम नानक प्रसादंग गुरदर्शन। चरणार बिंद मन विद्यंग सिद्ध्यंग सर्व कुशलण। गाथा गावंत नानक पब्यंग परा पूर्वण। शुभ बचन रमणंग गवणंग साध संगेण। उदरण संसार सागरंग नानक पुनरप जन्म न लभ्याते। वेद पुराण शास्त्र विचारंग एकंकार नाम उरतारंग। कुले समूह सगले उदारंग वडपागी नानक को तारंग। सिमरणंग गोविंद नामंग उदरणंग कुल समूहण। लब्ध्यंग साध संगेण नानक वडभागी पेटंत दर्शन। सर्व दोख परंग त्यागी सर्व धर्म दृढ़ंतण। लब्धेण साध संगेण नानक मस्तक लिखण। होयो है होवंतो हरण परण संपूर्ण। साधु सत्तम जानो नानक प्रीत कारणं। सुखैन बैन रत्नं रचनं कुसुम्बरंगण। रोग सोग बेयोगं नानक सुख ना सुपन। फुनहे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हाथ कलम या गम मस्तक लेखावती। उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती। उसत कहण ना जाए मुखो तुहारिया। मोही देख दर्श नानक बलिहारिया। संत सभा मैं बैस के कीर्त मैं कहां। अर्पी सब सिंगार एहो जियो सब देवा।

आस प्यासी सेज सोकंत विशाई है, हर हां मस्तक होवै भाग ता साजन पाई है। सखी काजल हार तंबोल सब है के साजिया, सो लै किए सिंगार के अंजन पाजिया। जे कर आवै कंत ता सब कुछ पाई है, हर हां कंत है बाज सिंगार सब बिरथा जाई है। जिस घर वसिया कंत सावड़ पागने, तिस बनिया हव सिंगार साई सुहागने। हौ सुती होया चिंत मन आस पुराइया, हर हां जा कर आया कंत ता सब किश पाईया पाईया। आस आईती आस के आस पुराइया, सतगुर पै दयाल ता पूरा पाईया। मैं तन अवगण बहुत के अवगण छाया, हर हां सतगुर पै दयाल ता मन ठहराया। कहो नानक बेअंत बेअंत ते आया, दुत्तरे हो संसार सतगुरु तराया। मिटया आवा गौण जा पूरा पाया, हर हां अमृत हर का नाम सतगुर ते पाया। मेरा हाथ पद्म आंगन सुख बसना, सखी मोरे कंठर तन पेख दुख नासना। बासो संग गोपाल सगल सुख रास हर, हर हारिद सिद्ध नवनिद बसै जिस सदा कर। परतरे रावण जाहे सेई ताला जिया, नित प्रत हिरै पर दर्ब शिदर कत ढाकी है। हर गुण रमत पवित्र सगल कुल तारई, हर हां सुनते पय पुनीत पार ब्रह्म विचारई। ऊपर बने आकाश तले तर सोहती, दह दिस चमकै बीजल मुख जोहती। खोजत फिरो बदेस पियो कत पाईऐ, हर हां जे मस्तक होवै भाग ता दर्स समाईऐ। डिठे सबे थाम नहीं तुद जेहिया, बदो पुरख बिधातै ता तू सोहिया। वसदी सगन अपार अनूप रामदास पुर, हर हां नानक कसमल जाहे नाया रामदास सर। चात्रक चित सुचित सो साजन चाहिए, जे संग लागे प्राण तिसै को वाही है। बन बन फिरते उदास बूंद जल कारणे, हर हां त्यों हर जन मांगे नाम नानक बलिहारणे। मित का चित अनूप मरम ना जानिए, गाहक गुनिया पार सो तत् पछानिए। चितै चित समाए ता होवै रंग घना, हर हां चंचल चोरै मार ता पावै सच तना। सुपना उबी पई गहयो की ना अंचला, सुंदर पुरख बराइत पेख मन बंचला। खोजो ता के चरण कहो कत पाई है, हर हां सोई जतन बताए सखी प्रयो पाई है। नैन ना देखै साध से नैन बिहालिया, करन ना सुनही नाद करन मुंद कालिया। रसना जपै नाम तिल तिल कर कटी है, हर हां जब बिसरै गोबिंद राए दिनो दिन कटी है। पंकज फाथे पंक महामद गुंफिया, अंग संग उरझाए बिसरते सुंफिया। है को ऐसा मीत जे तोरै बिखम गांठ, नानक एक श्री तरनाथ जे टूटे ले सांठ। तावो दसा अनेक प्रेम प्रभ कारणे, पंच सतावै दूत कमन बिदमारणे। तीखण बाण चलाए नाम प्रभ त्याई है, हर हां महा बिखादी कहात पूर्ण गुर पाई है। सदगुर की नीदात मूल नान खुट्टई, खावो पुंचो सब गुरमुख छुट्टई। अमृत नाम निदान दिता तो सहार, नानक सदा अराध कदे ना जाहे मर। जिथे जाए भगत सो थान सुहावना, सगले होए सुख हर नाम ते आवना। जी करण जयकार निंदक मोए पच, साजन मन आनंद नानक नाम जप।
ਪਾਵਨ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਕਤੈ ਨਹੀਂ ਸੇਵੀਐ, ਝੂਠੇ ਰੰਗ ਖੁਆਰ ਕਹਾਂ ਲਗ ਖੇਵੀਐ, ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਪੇਖ ਕਾਹੇ ਸੁਖ ਮਾਨਿਆ, ਹਰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਜੇ ਦਰ ਗਹਿ ਜਾਣਿਆ, ਕੀਨੇ ਕਰਮ ਅਨੇਕ ਗਵਾਰ ਬੇਕਾਰ ਕਹਨ, ਮਹਾਂ ਦੁਰਗੰਧਤ ਵਾਸ ਸੱਠ ਕਾ ਸ਼ਾਰ ਤਨ, ਫਿਰ ਤੋ ਗਰਭ ਗੁਬਾਰ ਮਰਨ ਜਾਨੈ, ਹਰ ਹਾਂ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਪੇਖ ਕਾਹੇ ਸੱਚ ਮਾਨੈ, ਜਿਸ ਕੀ ਪੂਜੈ ਔਦ ਤਿਸੈ ਕੌਣ ਰਾਖੈ, ਵੈਦਕ ਅਨਕ ਉਪਾਵ ਕਹਾਂ ਲਉ ਭਾਖੈ, ਏਕੋ ਚੇਤ ਗਵਾਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਆਵੈ, ਹਰ ਹਾਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਤਨਸ਼ਾਰ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਵੈ, ਔਖਦ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਅਮੋਲਕ ਪੀਜੈ, ਮਿਲ ਮਿਲ ਖਾਵੈ ਸੰਤ ਸਗਲ ਕਉ ਦੀਜੈ, ਜਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਤਿਸੈ ਹੀ ਪਾਵਣੇ, ਹਰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਜੇ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਵਣੇ, ਵੈਦਾ ਸੰਦਾ ਸੰਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਔਖਦ ਆਏ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਜੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮ ਸੁਕਰਮ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ।

बाद समन जव इस प्रेम की दम केहो होती साट, रावण होते सो रंकने जिन सिर दीने काट। प्रीत प्रेम तन खच रहया बीच नाराई होत, चरण कमल मन बेदेओ बुजन सुरत संजोग। सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम, मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर करम। मूसन मस्कर प्रेम की रही जो अंबर छाए, बिंदे बांदे कमल में पवर रहे लपटाए। जप तप संजम हरख सुख मान महत्यार गर्भ, मूसन निमखक प्रेम पर वार वार देओ सर्ब। मूसन मर्म न जान नहीं मर्त हिरत संसार, प्रेम परम न बेदेओ उर्जो मिथ व्यवहार। कब दब जब जारी है बिशरत प्रेम बेहाल, मूसन तब ही मूसी है बिसरत पुरख दयाल। जा को प्रेम सुआओ है चरण चितव मन माहे, नानक बिरही ब्रह्म के आन न कतहू जाहे। लख काटी ऊंचो कनौ चंचल चीत बेहाल, नीच कीच निमृत कनी करनी कमल जमाल। कमल नैन अंजन श्याम चंद्र बदन चित चार, मूसन मगन मरम स्यो खंड खंड करहार। मगन पयो प्रे प्रेम स्यो सूद ना सिमरत अंग, प्रगट पयो सब लो मैं नानक अदम पतंग। श्लोक भगत कबीर जीओ के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कबीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम, आज जुगादी सगल भगत ताको सुख विश्राम। कबीर मेरी जात कहो सबको हसने हार, बलिहारी इस जात कहो जे जप्यो सृजनहार। कबीर डगमग क्या करे कहां डुलावे जियो, सर्वसूख को नायको राम नाम रस पियो। कबीर कंचन के कुंडल बने ऊपर लाल जड़ाओ, दिसे दांदे कान ज्यो जिन मन नाही नाओ। कबीर ऐसा एक याद जो जीवत मृतक होए, निरपय होए कै गुण रवे जत पेखो तत सोए। कबीर जा दिन हो मुआ पाछ पया आनंद, मोहे मिलियो प्रभ अपना संगी भजै गोबिंद। कबीर सब ते हम बुरे हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए। कबीर आई मुझे पै अनक करे कर पेस, हम राखे गुरे अपने उनकीनो आदेश। कबीर सोई मारी है जे मुए सुख होए, पलो पलो सबको कह बुरो न मन कोए। कबीर राती हो मैं कारिया कारे उबे जंत, लह फाहे उठताव ते से जान मारे भगवंत। कबीर चंदन का बिरवा पला बेड़ो टाग पलास, ओए पी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। कबीर बांस बडाई बूढ़िया इओ मत डूबो कोए, चंदन कै निकटे बसे बांस सुगंध ना होए। कबीर दीन गवाया दुनी से ओ दुनी ना चली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफले अपने हाथ। कबीर जय जय हों फिर ओ कौतक ठा उठाए, एक राम स्नेही बहरा उजर मेरे पाए। कबीर संतन की चुंगिया पली पाठक सती गाओ, आग लगो तेह तौल हारो जे नाही हर को नाओ। कबीर संत मुए क्या रोई है जो अपने ग्रह जाए, रोबो सागत बापरे जो हट है हट बेकाए। कबीर सागत ऐसा है जैसी लक्षण की खान, कोने बैठे खाई है प्रगट होए निदान। कबीर माया डोलनी
पवन वहै हिवतार, जिन बिलोया तिन खाया अवर बिलो बनहार। कबीर माया चोरटी मुस मुसला वह हाट, एक कबीरा नाम सह जिन कीनी बारे बाट। कबीर सूखना एह जोग करे जो बहुत मीत, जो चित राखे एक स्यों ते सुख पावे नीत। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाई है पूर्ण परमानंद। राम पदार्थ पाए कै कबीरा गांठ ना खोल, नहीं पट नहीं पारखू नहीं गाक नहीं मोल। कबीर ता स्यों प्रीत कर जा को ठाकर राम, पंडित राजे पूपती आवे कौने काम। कबीर प्रीत एक स्यों किए आन दुबदा जाए, पावे लांबे केस कर पावे कर रमुडाए। कबीर जा काजर की कोठरी अंध परे तस्माहे, हम बलिहारी तिन कौ पैस जो निक सजाहे। कबीर यहो तन जाएगा सको ता लेहो बहोर, नांगे पावो ते गए जिनके लाख करोर। कबीर यहो तन जाएगा कवने मार्ग लाए, कह संगत कर साध की कह हर के गुण गाए। कबीर मरता मरता जग मुआ, मर पीना जानिया कोए, ऐसे मरने जो मरे बहुर न मरना होए। कबीर मानस जन्म दुलंब है, होए न बारे बार, ज्यो बन फल पाके पोए गरे बहुर न लागे डार। कबीरा तुही कबीर तू तेरो नाओ कबीर, आराम रतन तब पाई है जो पहले तजै शरीर। कबीर चंख ना चंखी है तुमरो कहो ना होए, कर्म करीम जो कर रहे मेट ना साके कोए। कबीर कसौटी राम की झूठा टके ना कोए, राम कसौटी सो सहै जो मर जीवा होए। कबीर उज्जल पैरे कापरे पान सुपारी खाहे, एक सहर के नाम बिन बांधे जमपुर जाहे। कबीर बेड़ा जर जरा फूटे शेंक हजार, हरुए हरुए तर गए डूबे जन सरपार। कबीर हार्ड जर

करते हुए सो होए। कबीर बैसनो की कुकर भली सागत की बुरी माए, ओ नित सुने हर नाम जस ओ पाप बिसाहन जाए। कबीर हरना दुबला एहो हरियारा ताल, लाख अहेरी एक जियो केता बंचो काल। कबीर गंगा तीर जो कर करे पीवे निर्मल नीर, बिन हर भगत ना मुक्त होए इयों कह रमे कबीर। कबीर मन निर्मल पया जैसा गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर हर दीपी अरी चूना उज्जल पाए, राम स्नेही तो मिले दोनों बरन गवाए। कबीर हर दीपी रतन हर है चून चहन ना रहाए, बलिहारी यह प्रीत कहो जे जात बरन कुल जाए। कबीर मुक्त द्वार।

कबीर माए मुंडो ते गुरु की जाते परम ना जाए, आप डुबे चौबे मैं चेले दिए बहाए। कबीर जेते पाप किए राखे तले दुराए, प्रगट पै निदान सब जा पूछे धर्म आए। कबीर हर का स्मरण छाड़ के पाल्यो बहुत कुटंब, तंदा करता रह गया भाई रहा ना बंद। कबीर हर का स्मरण छाड़ के रात जगावन जाए, सरपन हो कै उतरे जाए अपने खाए। कबीर हर का स्मरण छाड़ के अहोई राखे नार, गधी हो कै उतरे पारस है मन चार। कबीर चतराई अत कनी हर जप हिरदय माहे, सूरी उपर खेलना ग्रहता ठाहर नाहे। कबीर सोई मुख तन है जा मुकैये राम, देही किसकी बापरी पवित्र होए गो ग्राम। कबीर सोई कुल पली जा कुल हर को दास, जे कुल दास न उपजै सो कुल ढाक पलास। कबीर है गए बाहन सगन कानो, लाख तजा फहराए, या सुख ते पिखिया पली जो हर सिमरत दिन जाए। कबीर सब जग हों फिरयो मांदल कंध चढ़ाए, कोरी कोई काहू को नहीं सब देखी ठोक बजाए। मार्ग मोती बीथरे अंधा निकस्यो आए, जोत बिना जगदीश की जगतो लंगे जाए। बूढ़ा बंस कबीर का उपजो पूत कमाल, हर का सिमरन छाड़ के कर ले आया माल। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ ना लीजे कोए, पाछे पाव ना दीजिए आगे होए सो होए। कबीर जग बांध्यो जह जेवरी, तेह मत बंधो कबीर, जह आटा लोन ज्यो सोन समान शरीर। कबीर हंस उड्यो तन गाड्यो सो जाई सैनाहा, अज हूं जियो ना छोड़ई रंकाई नैनाहा। कबीर नैन निहारो तुझ कहो श्रवण सुनो तो नाओ, बैन उचरो तो नाम जी चरण कमल रिद ठाओ। कबीर सुर्ग नर्ग ते मैं रहो सतगुर के प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहो अंत अर्याद। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, कह बे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख कह कह कहो कहे ना को पतियाए, हर जैसा तैसा उही रहो हरख गुन गाए। कबीर चुगै चितारे पी चुगै चुग चुग चितारे, जैसे बचरे कुंज मन माया ममता रे। कबीर अंबर कन हर छाया बर्ख भरे सरताल, चातरक जो तरसत रह तिनको कौन हवाल। कबीर चकी जो निस बिछरे आए मिले प्रभात, जो नर बिछरे राम स्यो ना दिन मिले ना रात। कबीर रह नायर बेशोरिया रहोरे संख मजूर, देवल देवल ताहड़ी देसे उगवत सूर। कबीर सूता क्या करे जाग रोए पै दुख, जाका बासा गोर मैं सो क्यों सो वै सुख। कबीर सूता क्या कर है उठ के ना जपै मुरार, एक दिन सोमन होए गो लांबे गोड पसार। कबीर सूता क्या करे बैठा रहो अर जाग, जाके संगते बिछरा ताही के संग लाग। कबीर संत की गल ना छोड़िए मार्ग लागा जाओ, पेखत ही पोनीत होए पेट जपिए नाओ। कबीर साक्त संग ना कीजिए दूर जाइए भाग, बासन कारो परसिए तौ कछ लागे दाग। कबीरा राम ना चेतियो जरा पहुंचो आए, लागी मंदिर द्वार ते आप क्या काढ़िया जाए। कबीर कारण सो पयो जो कि नो करतार, तिस बिन दूसर को नहीं एक सृजनहार। कबीर फल लागे फलन पाकन लागे आंब, जाय पहुंचे खसम को जो बीच ना खाही कांब। कबीर ठाकर पूजे मोल ले मानहर तीर्थ जाहे, देखा देखी स्वांग तार पुले पटका खाहे। कबीर पाहन परमेश्वर किया पूजे सब संसार, इस परवासे जो रहे बूढ़े काली तार।
ਕਬੀਰ ਕਾਗਦ ਕੀ ਓਬਰੀ ਮਸਕੇ ਕਰਮ ਕਪਾਟ ਪਾਹਨ ਬੋਰੀ ਪਿਰਥ ਮੀ ਪੰਡਿਤ ਪਾੜੀ ਬਾਟ। ਕਬੀਰ ਕਾਲ ਕਰੰਤਾ ਅਬ ਹੈ ਕਰ ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੋਏ ਤਾਲ ਪਾਛੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜਬ ਸਿਰ ਪਰ ਆਵੈ ਕਾਲ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਜਨਤਿਕ ਦੇਖਿਆ ਜੈਸੀ ਧੋਈ ਲਾਖ ਦਿਸੈ ਚੰਚਲ ਬਹੁਗੁਣਾ ਮਤਹੀਨਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਕਹੋ ਜਮ ਨਾ ਕਰੈ ਤਿਸਕਾਰ ਜਿਨ ਇਹੋ ਜਮੂਆ ਸਿਰਜਿਆ ਸੋ ਜਪਿਆ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਕਬੀਰ ਕਸਤੂਰੀ ਪਇਆ ਭਵਰ ਭਏ ਸਬਦਾਸ ਜਿਉ ਜਿਉ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕੀ ਤਿਉ ਤਿਉ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਕਬੀਰ ਗਹਿ ਗਜ ਪਰਿਓ ਕੁਟੰਬ ਕੈ ਕਾਂਠੈ ਰਹਿ ਗਿਓ ਰਾਮ ਆਏ ਪਰੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੇ ਵਿਚੈ ਤੂੰ ਮਾਤਾਮ। ਕਬੀਰ ਸਾਗ ਤੇ ਸੂਕਰ ਪਲਾ ਰਾਖੈ ਅੱਛਾ ਗਾਓ ਉਹ ਸਾਗਤ ਬੱਪਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਲਹਿ ਨਾਓ। ਕਬੀਰ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋਰ ਕੈ ਜੋਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋਰ ਚਲਤੀ ਬਾਰ ਨਾ ਕਛ ਮਿਲਿਓ ਲਈ ਲੰਗੋਟੀ ਤੋਰ। ਕਬੀਰ ਬੈਸਰੋਂ ਹੁਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਿਆ ਮਾਲਾ ਮੇਲੀ ਚਾਰ ਬਾਹਰ ਕੰਚਨ ਬਾਰਹਾ ਪਿੱਤਰ ਭਰੀ ਪੰਗਾਰ। ਕਬੀਰ ਰੋਣਾ ਹੋਏ ਰਹੁ ਬਾਟਕਾ ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਮਾਨ ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਮਿਲੈ ਭਗਵਾਨ। ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ

मुख ते राम संभाल, हाथ पाओ कर काम सब, चीत निरंजन नाल। महला पंजवा, कबीरा हमरा को नहीं, हम किसू के नाहे, जिन एहो रचन रचाया तिसी माए सुमाहे। कबीर की चिड़ियाटा गिर परया, किशु ना आयो हाथ, पीस्त पीस्त चाबिया सोई निभया साथ। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगन करे काहे की कुसलात। हाथ दीप कुए पर है, कबीर लागी प्री सुजान, स्यों बरजै लो गया जान, ता स्यों टूटी क्यों बने जाके जी प्राण। कबीर कोठे मंडप हेत कर, काहे मरो सवार, कार्ज साढ़े तीन हाथ, कहीं ता पौने चार। कबीर जो मैं चितवो ना करे, क्या मेरे चितवे होए, अपना चितव्या हर करे, जो मेरे चेतना होए। महला तीजा, चिंता पे आप कराए सिया, चिंत पे आपे दे, नानक सो साला ही है, जे सब ना सार करे। महला पंजवा, कबीर राम ना चेते, ओ फिर या लालच माहे, पाप करंता मर गया, औध पुनी खिन माहे। कबीर काया काची कारवी, केवल काची तात, साबत रखे ता राम पाज, नाहे ता बिरठी बात। कबीर केसो केसो कुकिया, ना सोइए आसार, रात दिवस के कुकने, कबहू के सुने पुकार। कबीर काया कजली बन पया, मन कुंचर मैं मंत, अंकस ज्ञान रतन है खेवट बिरला संत। कबीर राम रतन मुख कोथरी, पारख आगे खोल, कोई आए मिले गो गाह की, ले गो में गो मोल। कबीर राम नाम जान्यो नहीं, पाल्यो कटक कुटंब, तंदे ही मैं मर गयो बाहर पई ना बंब। कबीर आखी केरे माटके, पल पल गई बिहाए, मन जंजाल ना छोड़ई, जम दिया दमामा आए। कबीर तारवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग, छाया रूपी साध है, जिन तजया बाद विवाद। कबीर ऐसा बीज बोए बारे मास फलंत, शीतल छाया गहर फल, पंखी केल करंत। कबीर दाता तरवर दया फल, उपकारी जीवंत, पंखी चले दिसावरी बिरखा सुफर फलंत। कबीर साधु संग प्राप्ति, लिखिया होए ललाट, मुक्त पदार्थ पाई है ठाक ना या कटकाट। कबीर एक कड़ी आदि करी, आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोष्टे जो कीने सो लाभ। कबीर भांग माछली सुरा पान, जो जो प्राणी खाहे, तीर्थ व्रत नेम किए ते सबै रथा तल जाहे। नीचे लोहिन कर रहो ले साजन कट माहे, सब रस खेलो पीसो किसी लिखावो नाहे। आठ जाम चौ सठ करी, तो निरखत रह जियो, नीचे लोहिन क्यों करो, सब कट देखो पियो। सुन सखी पी मह जियो बसे, जी में बसे के पियो, जियो पियो बूझो नहीं, कट में जियो के पियो। कबीर बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाहे, अर्ज उर्ज के पचमुआ, चारो बेदो माहे। हर है खांड और रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए, कह कबीर गुर पली बुझाई, कीटी होए कह खाए। कबीर जो तुहे तो साध ब्रह्म की, शीस काट कर गोए, खेलत खेलत हाल कर, जो किश होए ता होए। कबीर जाओ तोहे साध प्रम की, पाके से ती खेल, काची सरसों पेल के, ना खल पही ना तेल। ढूंढत डोले अंध गत, अर चिंत नाही संत, कह नामा क्यों पाई है बिन भगतो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ के, करे आन की आस, ते नर दो जग जाहेंगे, सत पाखे रविदास। कबीर जो ग्रहो करे ता धर्म कर,

फरीदा दिल दत्ता इस दुनी स्यों दुनी ना कितै काम मिसल फकीरां गाखड़ी सो पाइए पूर करम पहले पहरे फुलड़ा फल पी पच्छा रात जो जागन लहन से साई कन्नो दात दाती साहेब संधिया क्या चलै तिस नाल इक जागन दे ना लहन इक ना सुत्या दे उठाल ढूंढें दिए सुहाग को तौ तनकाई कोर जिन्ना ना सुहागनी तिन्ना चाक ना होर सबर मंज कमान ए सबर का निहुणो सबर संदा बाण खालक खता ना करी सबर अंदर साबरी तन ए वै जालेन हुन जी खुदाई दै भेत न किसै देन सबर एहो सुवाओ जे तू बंदा दिड़ करै वद थी वै दरियाओ टुटना थी वै वाहड़ा फरीदा दरवेसी गाखड़ी चोपड़ी परीत इकन किने चाली है दरवेसा वी रीत तन तपै तनूर ज्यों बालन हड बलन पैरी थका सिर जुला जे मूह प्री मिलन ताना तपाए तनूर ज्यों बालन हड ना बाल सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर प्री निहाल हाउ ढूंढेंदी सजना सजन मैंड नाल नानक अलख ना लखिए गुरमुख दे दिखाल हंसा देख तरन दया बग्गा आया चाओ डुब मोए बग बपड़े सिर तल उपर पाओ मैं जानिया वडहंस है ता मैं कीता संग जे जाना बग बपड़ा जन्म ना पेड़ी अंग क्या हंस क्या बगला जा को नदर धरे जितस पावे नानका का गो हंस करे सरवर पंखी हेकड़ो फाही वाल पचास एहो तन लहरी गट थिया सच्चे तेरी आस कमण सो अखर कमण गुण कमण सो मणिया मंत कमण सो वे सो हौ करी जित वस आवे कंत निमण सो अखर खमण गुण जिहबा मणिया मंत ए त्रै भैणे वेसकार ता वसिया वीकंत मत होंदी होए इयाणा तान होंदे होए निताणा अण होंदे आप वंडाए को ऐसा भगत सदाए एक फिक्का ना गालाए सब नाम है सच्चा तनी हयाओ ना कही ठाहे माणक सब अमोलवे सबना मन माणक ठाहन मूल मचांगवा जे तो प्रिया दी से।

समावत बिष्टा अस्तक्रम उदर भरियो है। दैद स्थाए महाबिखिया कहो पर तनशीन अज्ञान हरियो है। जोबन बीत जरा रोग ग्रसियो जम दूतन दंड मृत मरियो है। अनक जोन संकट नरक पुंचत शासन दुख गर्त गरियो है। प्रेम भगत उदरैसे नानक कर कृपा संत आप करियो है। गुण समूह फल सगल मनोरथ पूर्ण होई आस हमारी। औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मत्सा तृष्णा बिन सजाए हर नाम उचारी। इशनान दान तपन सुच किरिया चरण कमल हृदय प्रभु तारी। साजन मीत सखा हर बंदप जी तान प्रप्राण आधारी। उठ गही स्वामी समर्थ है नानक दास सदा बलिहारी। आवद कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग। दामन बंद्यो ना जात बिदे मन दर्श मग। पावक जरियो ना जात रहो जन तूर लग। नीर ना सक सबोर चले हर पंथ पग। नानक रोग दोख अग मोह छिदे हर नाम खग। उद्यम कर लागे बहु पांति बिचरे अनक शास्त्र बहु खटुआ। पसम लगाए तीर्थ बहु प्रमते सूखम दे बंदे बहु जटुआ। बिन हर भजन सगल सुख पावत बिन हर भजन सगल दुख पावत। जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ। पूजा चक्र करत सोम पाका अनक पांत थाटे कर थटुआ। सवैये महले पहले के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक मन पुरख त्याय बरदाता संत सार सदा बिखियाता। ताह चरण ले हृदय बसावो तो परम गुरु नानक गुण गावो। गावो गुण परम गुरु सुख सागर दुर्त निवारण शब्द सरे। गावे गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम त्यान तरे। गावे इंद्राद भगत प्रहलाद को आत्म रस जिन जानेओ। कब कल सुजस गावो गुरु नानक राजोग जिन माणेओ। गावे जनकाद जुगत जोगेसर हर रस पूर्ण सर्व कला। गावै सनकाद साध सिधाधक मुन जन गावै अशल शला। गावै गुण तोमा टल मंडल वै भगत पाए रस जानेओ। कब कल सुजस गावो गुरु नानक राजयोग जिन माणेओ। गावै कपलाद आदि जोगेसर अपरंपर अवतार वरो। गावै जम दगन परसरा मेसर कर कुठार रग तेज हरियो। उदो अक्रूर बिदर गुण गावै सर्वात्म जिन जानेओ। कब कल सुजस गावो गुरु नानक राजयोग तै माणेओ। गावै गुण बरनचार खड दर्शन ब्रह्मादिक समरंथ गुना। गावै गुण सेस सहस जेबा रस आदि अंत लिव लाग तुना। गावै गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जानेओ। कब कल सुजस गावो गुरु नानक राजयोग तै माणेओ। राजयोग तै माणेओ छल्यो राजयोग तै माणेओ। बस्यो निर्वैर निरंतर सृष्ट सगल उदरी नाम ले तरयो निरंतर। गुण गावै सनकाद आदि जन का जुगै लग। तन तन गुर तन जन्म सक्यथ भलो जग। पातालपुरी जयकार तुन कब जन कल वखाणेओ। हर नाम रसक नानक गुर राजयोग तै माणेओ। सतयुग तै माणेओ छल्यो बल बावन पायो। त्रेतै तै माणेओ राम रघुवंश कहायो। द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो। उग्र सैन कौ राज अपै भगतै जन दियो। कलयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो। श्री गुरु राज अब चल टल आदि पुरख फुरमायो। गुण गावै रविदास भगत जय देव तरलोचन। नामा भगत कबीर सदा गावै समलोचन। भगत बिन गुण रवै सहज आत्म रंग माणै। जोग ध्यान गुर ज्ञान बिना
प्रभ अवर न जाने, सुख देव परीक्षित गुण रवै, गोतम रिख जस गायो, कब कल सुजस नानक गुर, नित नव तन जग छायो। गुण गावै पयाल भगत नागाद पुयंगम, महादेव गुण रवै सदा जोगी जत जंगम। गुण गावै मन ब्यास जिन वेद व्याकरण विचार, ब्रह्मा गुण उचरै जिन हुक्म सब सिरट सवारी। ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण समझाण्यो, जब कल सुजस नानक गुर सहजोग जिन माण्यो। गुण गावै नवनाथ धन गुर साथ समायो, मां दाता गुण रवै जिन चक्र वै कहायो। गुण गावै बलराओ सबत पाताल बसंतो, भर थर गुण उचरै सदा गुर संग रहंतो। दूर बा पुरो अंगरै गुर नानक जस गायो, कब कल सुजस नानक गुर कटकट सहि समायो। सवैये महल्ले दूजे के एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सोई पुरख धन करता कारण करतार करण समरथो, सतगुरु तन नानक मस्तक तुम तरियो जिन हथो। ता तरियो मस्तक हथ सहज आम्यो उठो सज, सुर नर गण मुन बोहि अगाज, मार्यो कंटक काल गर्ज तावत लियो बर्ज। पंचपूत एक कर राख ले समझ, जग जीतो गुरुद्वार खेले समत सार। रथ उन मानो लेव राख निरंकार, कहो कीर्त काल सहार सप्त दीप मजार। लहना जगत गुर परस मुरार, जा की दृष्ट अमृत तार कालख खन उतार। तिमर अज्ञान जाहे दर्श द्वार, ओए जो सेवै शब्द सार गाखड़ी बिखमकार। ते नर पव उतार किए निरपार, सत संगत सहज सार जागी ले गुर बीचार। निमरी पूत सदीव परम प्यार, कहो कीर्त कल सहार शब्द दी मजार। लहना जगत्र गुर परस मुरार, तैं तो दृढ़ो नाम अपार। बिमल जास बिथार साधक सिद्ध सुजान जिया को आधार, तू ता जनक राजा अवतार शब्द संसार सार। रह जगत्र जल पद्म विचार, कल्पतर रोग बेदार संसार ताप निवार। आत्मा त्रिविध तेरा एक लिवतार, कहो कीर्त कल सहार सप्त दीप मजार। लहना जगत्र गुर परस मुरार, तैं ता हदर्थ पायो मान सेव्या गुर प्रवान। साध अजगर जिन किया उन्मान, हर हर

वर्ष एक हों फिर ओ किने नो पर चौलायो कहते है कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो हर नाम छोड़ दूजे लगे तिन के गुणों क्या कहो गुरदय मिलायो पिखिया जिव तू रखे तिव रहो पहर समाध सुना हो ज्ञान है आसन चढ़े आओ धर्म तनख कर गहे हो भगत सीले सर लड़े आओ पह निरपो हरा टल मानो शब्द गुर ने जा गड्डे आओ काम क्रोध लो मोह अपत पंच दूत बेखंडे आओ पलो पुहाल तेजो तना निरपद नाथ नानक बार गुर अमरदास सल पान तैं दल जितो इव युद्ध कर कन हर बूंद बसोरो मावल कुसुम बसंत गणंत नयावै रव सस्करण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्ह जो गावै पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवै सवैये महल्ले चौथे के एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक मन पुरख निरंजन त्यावो गुर प्रसाद हर गुण सदगावो गुण गावत मन होए बिगासा सतगुर पूर जिने की आसा सतगुर से परम पद पायो अब नासी अब गाते आयो तिस भेटे दर दरना चंपै कल सहार तास गुण जंपै जंपो गुण बिमल सुजन जन के रे अमे नाम जा को फुरिया इन सतगुर सेव शब्द रस पाया नाम निरंजन और धरिया हर नाम रस गोविंद गुण गाहक चाहक तत् समत सरे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर भरे छुटत प्रवाह अमे अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया ते पीवै संत करै मन मज्जन पुबजनो सेवा करिया तिन पहु निवार अन पै पादीना शब्द मात्र ते उदर धरे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे सतगुर मत गूढ़ बिमल सत संगत आत्म रंग चलूल पया जाग्या मन कवल सहज प्रकाशया अपै निरंजन करै लहा सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया तिस प्रसाद वस पंच करे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे अन पौ उन्मान अकल्यव लागी पारस पेटिया सहज करे सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार परे मेटिया जन्मात मरण पौ भागा चित लागा संतोख सरे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे अपर परे पायो अपार हृदय अंतर धारियो दुख पंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारियो सदा चाहे हर पाए प्रेम रस आपे जाने सतगुर कै प्रसाद सहज से तीरंग माने नानक प्रसाद अंगद समात गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास कलुचरै तैं अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बसै अमे रस रसन प्रकाशै मिलत सांत उपजै दुरत दूरंतर नासै सुख सागर पायो दिनत हर मग न हुटै संजम सत संतोख सील सनहु फुटै सतगुर प्रमाण बिदने सिरयो जग जस तूर बजायो गुर रामदास कलुचरै तैं अपै अमर पद पायो जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक ते आयो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो निव निद नव निद नाम निधान रिद्ध सिद्ध ता की दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेट्यो अबनासी आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दृढ़ायो गुर रामदास कलुचरै तैं हर प्रेम पदार्थ पायो प्रेम भगत प्रवाह प्रीत पुबली ना हुटै सतगुर शब्द अथाह अमे तारा रस गुटै मत माता संतोख पिता सरसै समायो आजोनी संपावयो जगत गुर बचन तरायो आप गात्या गोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कलुचरै तैं जगतो धारण पायो
जगतो उदाहरण नाम निदान भगत पवतारण अमृत बूंद हर नाम बिसकी बिखै निवारण साहित रोवर फलो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जनवट पागे ते मुक्ते पाए सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कलुचर तै शब्द निशान मजायो से सदा सहे शावान संतोख सराय चाओ सदा सील सन्ना हो सो है गुर शब्द समाचरियो नाम टेक संगाद बो है आजोनियो पालिया माल सदगुर संग निवास गुर रामदास कलुचर तो सह सरोवर वास गुर जिन कौ सो प्रसन्न नाम हरदय निवास है जिन कौ गुर सो प्रसन्न दुरत दूर अंतर नास है गुर जिन कौ सो प्रसन्न मान अभमान निवार है जिन कौ गुर सो प्रसन्न शब्द लग पव जल तार है परचो प्रमाण गुर पायो तिन सके अथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुक्त सब गुरु लग सतगुर खेमा ताणिया जुग जूत समाणे अनपौ नेजा नाम टेक जित भगत्या गाणे गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे एहो राज जोग गुर रामदास तुमहू रस जाने जनक सोए जिन जानिया उन मन रस तरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावै एहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बने आवै सतगुर नाम एक लेव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कथ होवै जियो तारन तरन खिन मात्र जा को दृष्ट तार है शब्द रिद विचार है काम क्रोध खोवै जियो जियन सवन दाता अगम ज्ञान बखियाता एहन इस ध्यान तावै पलक ना सोवै जियो जा को देखत दृद्र जावै नाम सो निदान पावै गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल धोवै जियो सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो धर्म करम पूरै सतगुर पाई है जा की सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचै शब्द सार एक लिव लाई है फुन जान को तेरा अपार निरपौ निरंकार अकथ कथनहार तुझे बुझाई है परम पूले संसार छुट्टो जूनी संगार जम को ना दंड काल गुरमत त्याई है मन प्राणी मुग्ध विचार अहनिस जप धर्म करम पूरे सतगुर पाई है हम बल बल जाओ सतगुर साचे नाम पर कवन उपमा देओ कवन सेवा सिरेओ एक मुख रसना रसो जुग जोर कर फुन मन बच कर्म जान अंत दूजा नामान नाम सो अपार सार दिनो गुर रिद तार नल कव पारस परस कच कंचना नल कव पारस परस कच कंचना होए चंदना सुबास जास सिमरत अन तार जाके देखत दुआरे काम क्रोध ही निवारे जी हम बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर राज जोग तख्त दियन गुर रामदास प्रथमे नानक चंद जग भयो आनंद तारन मनुख जन कियो प्रगास गुर अंगद दियो निदान अकथ कथा ज्ञान पंचभूत बस कीने जमत ना त्रास गुर अमर गुरु श्री सत कल युग राखी पत अग्न देखत गत चरण कवल जास सब विद्मान्यो मन तब ही पयो प्रसन्न राजयोग तख्त दियन गुर रामदास रड जिसै तारयो तरत अर व्योम अर पवन ते नीर सर अवर अनल अनाद कियो सस रेख निस सूर दिन सैल तरु फल फुल दियो सुर नर सप्त समुन्दर के तारयो त्रिपवन जास सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर प्रगास कच्चो कंचन पयो शब्द गुर श्रवण सुनयो बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पणयो लोहो होयो लाल नदर सतगुर जा तारै
ਪਾਹਣ ਮਾਨਕ ਕਰੈ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੈ। ਕਾਠੋ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਓ ਦੁਖ ਦਰਿਦਰ ਤਿਨਕੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਜਨ ਪਰਸਿਆ ਸੇ ਪਸ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਪਏ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਤਨੈ ਕਿਆ ਗਰਵ ਦਿਜੈ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਲਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕਿਜੈ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਗਿਆਨ ਅਰ ਧਿਆਨ ਅਨਨ ਪਰ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਸੋ ਸੱਚੈ ਘਰ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਹਿਨਸ ਜਪੈ ਦਾਸ ਪਟ ਬੇਨਤ ਕਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮੈਂ ਧਰੈ ਸੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਥੇ ਰਹਿ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਪੁੰਨ ਅਗਨ ਕੱਟੈ ਸਭ ਤੇਰੇ। ਗੁਰ ਨੈਣ ਬੈਣ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਹੋ ਗੁਰੂ ਸਤ ਕਵ ਨਲ ਕਹੈ। ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਨਾ ਹੋ ਕੀਓ ਤੇ ਅਕਥ ਸੰਸਾਰ ਮਹਿ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਰੱਥ ਕਲ ਯੁਗ ਸੁਨਤ ਸਮਾਧ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਕੇ ਰੇ। ਫੁਨ ਦੁਖ ਨਾਸ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੂਰਉ ਜੋ ਧਰਤ ਧਿਆਨ ਬਸਤ ਤੇ ਨੇਰੇ। ਪੂਰਉ ਪੁਰਖ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਮੁਖ ਦੇਖਤ ਅਗ ਜਾਹੇ ਪਰੇਰੇ। ਜੋ ਹਰ ਬੁੱਧ ਰਿਦ ਸਿੱਧ ਚਾਹਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਹੁਤੀ ਜੋ ਪਿਆਸ ਪੀ ਉਸ ਪਿਵੰਨ ਕੀ। ਬੰਛਤ ਸਿੱਧ ਕਉ ਬਿਦ ਮਿਲਾਇਓ ਪੂਰਨ ਭੋ ਮਨ ਠੌਰ ਬਸੋ। ਰਸ ਬਾਸਨ ਸਿਓ ਜੋ ਦਹੰਗ ਦਿਸਤਾਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਪੁਰੀ ਸਮ ਜਲਨ ਤੀਰ ਵਿਪਾਸ ਬਿਨਾਇਓ। ਗਯੋ ਦੁਖ ਦੂਰ ਬਰਖਨ ਕੋ ਸੋ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਅਗਨ ਹਰਿਓ ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ ਸੋ ਨਾਮ ਸੁਨੇ ਸੁਤ ਪਾਣ ਡਰਿਓ। ਭਨ ਦਾਸ ਸੁਵਾਸ ਜਗਤਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਰਸ ਪੇਟ ਪਰਸ ਕਰਿਓ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਅਬ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀ ਲਾਜ ਜੈਸੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ ਹਰ ਨਾਗ ਸਫਾਰੇ ਕਰ ਆਜ। ਫੁਨ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਸ਼ੀਨਤ ਬਸਤਰ ਦੀਨ ਬਹੁ ਸਾਜ। ਸੋ ਦਾਮਾ ਅਪਦਾ ਤੇ ਰਾਖਿਆ ਗਨਕਾ ਪੜਤ ਪੂਰੇ ਤੇ ਕਾਜ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਲਯੁਗ ਹੋਏ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀ ਲਾਜ। ਝੋਲਨਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਪ੍ਰਾਨੀਆ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ ਨਾਮ ਨਾਮ ਨਿਦ ਅਪੈ ਰਸਨ ਅਹਿਨਸ ਰਸੈ ਸਤ ਕਰ ਜਾਨੀਆ। ਫੁਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖੈ ਤੇ ਆਈਐ ਅਨ ਮਾਰਗ ਤਜੋ ਭਜੋ ਹਰ ਗਿਆਨੀਆ। ਬਚਨ ਗੁਰ ਰਿਦ ਧਰੋ ਪੰਚ ਭੂ ਬਸ ਕਰੋ ਜਨਮ ਕੁਲ ਉਧਰੋ ਦੁਆਰ ਹਰ ਮਾਨੀਆ। ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਭ ਸੁਖ ਇਤਯੁਤ ਤੁਮ ਬੰਛਵੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਪ੍ਰਾਨੀਆ। ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਸਤ ਕਰ ਅਗਮ ਗੁਣ ਜਾਣ ਨਿਦਾਨ ਹਰ ਮੰਤਰੋ ਧਿਆਨ ਅਹਿਨਸ ਕਰੋ ਬਚਨ ਗੁਰ ਦੈ ਤਰ। ਫੁਨ ਗੁਰੂ ਜਲ ਬਿਮਲ ਅਥਾਹ ਮੱਜਨ ਕਰੋ ਸੰਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਤਰੋ ਨਾਮ ਸਚ ਰੰਗ ਸਰ। ਸਦਾ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਕਰਤ ਦ੍ਰਿੜ ਭਗਤ ਹਰ। ਮੁਗਧ ਮਨ ਭ੍ਰਮ ਤਜੋ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਸਤ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਹਰ ਪਾਈਐ ਉਦਤ ਗੁਰ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਬੇਅੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਗ ਹੀਰ ਮਨ ਮਿਲਤ ਲੇ ਵਲਾਈਐ। ਫੁਨ ਗੁਰੂ ਪਰਮਲ ਸਰਸ ਕਰਤ ਕੰਚਨ ਪਰਸ ਮੈਲ ਦੁਰਮਤ ਹਿਰਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਧਿਆਈਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਛੁਟਕੰਤ ਸਾਧੁ ਆਰ ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਬਿਮਰ।

श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा, सत युग जंत्र ऊपर श्री प्रहलाद भगत उदरियं, हस्त कमल माथे पर धरियं, अलख रूप जी लख्या ना जाई, साधक सिद्ध सगल सरनाई, गुर के बचन सत जी तारो, मानस जन्म देह निस्तारो, गुर जहाज खेवट गुरु, गुर बिन तरिया ना कोए, गुर प्रसाद प्रभु पाईए, गुर बिन मुक्त ना होए, गुर नानक निकट बसै बनवारी, तन लहना थाप जोत जगतारी, लहना पंथ धर्म का किया, अमरदास पल्ले कहो दिया, तिन श्री रामदास सोडी थर थपे आओ, हर का नाम अखै निध अपियो, हर नाम अखै निध चहो जुग, गुर सेवा कर फल लहियं, बंदे जो चरण सरण सुख पावै, परमानंद गुरमुख कहियं, प्रतख देह पार ब्रह्म स्वामी, आद रूप कोखण परणं, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री रामदास तारण तरणं, जेह अमृत बचन बाणी, साधु जन जप है कर बचित चाओ, आनंद नित मंगल, गुर दर्शन सफल संसार, संसार सफल गंगा गुर दर्शन, परसन परम पवित्र गते, जीते जम लोक पतत जे प्राणी, हर जन सेव गुर ज्ञान रते, रग वंश तिलक सुंदर दशरथ, कार मुन बंछे जाकी सरणं, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री रामदास तारण तरणं, संसार अगम सागर तुलहा, हर नाम गुरु मुख पाया, जग जन मरण पग्गा ए आई ही है प्रतीत, प्रतीत ही है आई जन जन कै, तिनको पदवी उच पई, तज माया मोह लोभ अर लालच, काम क्रोध की बिरथा गई, अवलोकिया ब्रह्म परम सब छुटकिया, दिव दृष्ट कारण करणं, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री रामदास तारण तरणं, प्रताप सदा गुर का कट कट, प्रगास पया जस जन कै, एक पड़ै सुने गावै, प्रभाते करै इशनान, इशनान करै प्रभात शुद्ध मन, गुर पूजा विद सहत करं, कंचन तन होए परस पारस कहो, ज्योत स्वरूपी ध्यान तरं, जग जीवन जगन्नाथ जल थल मैं, रहया पूर बहुविध वर्णं, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री रामदास तारण तरणं, जिनो बात निश्चल त्रु जानी, तेई जीव काल ते बचा, तिन तरयो समुंदर रुद्र खिन एक मैं, जल हर बिंब जुगत जग रचा, कुंडलनी सुरजी सतसंगत, परमानंद गुरु मुख मचा, श्री गुरु साहिब सब ऊपर, मन बच क्रम सेवी है सच्चा, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, कवल नैन मदर बैन कोट सैन संग सोब, कहत मां जसोद जिसै दही पात खाहे जियो, देख रूप यातन रूप मोह महा मग पई, किंकनी शब्द चुनतकार खेल पाहे जियो, काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सकै, ईस बम ज्ञान ध्यान तरत ही है चाहे जियो, सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही।

चरण कमल सदा से ओ दृढ़ता कर मत जियो। नाम सार हिये तार तज बिकार मन गे अंध, श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाहगुरु तेरा सब सदका, निरंकार प्रभ सदा सलामत, कह ना सकै को तू कद का। ब्रह्मा विष्णु सिरे तैं अगणत, तिनको मोह भया मन मद का। चौरासी लख जोने उपाई, रिजक दिया सब हूं कौ तद का। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाहगुरु तेरा सब सदका। वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, आपे हसै आप ही चितवै, आपे चंद सूर परगासा। आपे जल आपे थल थम्मन, आपे किया कटकट बासा। आपे नर आपे फुनारी, आपे सार आप ही पासा। गुरमुख संगत सबै बेचारा, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा। किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना। तू जल थल गगन प्या

निरंजन जचना, गुर प्रसाद पाइए परमार्थ सतसंगत सेती मन खचना। किया खेल बड़मेल तमाशा, वाह गुरु तेरी सब रचना। अगम अनंत अनाद आद जिस कोए न जाने, शिव ब्रंच तर ध्यान नित जिस वेद बखाने। निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई, पंजन गण समरथ तरन तारन प्रभ सोई। नाना प्रकार जिन जग कियो, जन मथरा रसना रसै। श्री सतनाम करता पुरख गुरु रामदास चित्तै बसै। गुरु समरथ गह करिया, त्रुव बुद्ध सुमत सुमारन को। फुन त्रम तुजा फहरंत सदा, अग पुंज तरंग निवारण को। मथुरा जन जान कही जी साच, सो और कशु ना विचारन को। हर नाम बोहित बड़ो कल मैं, पवसागर पार उतारन को। संतत ही सतसंगत संग, सो रंग रते जस गावत है। धर्म पंथ तरयो तरनी तर आप, रहे लिव तार ना तावत है। मथुरा पन भाग पले उनके, मन इच्छित ही फल पावत है। रव के सुत को तिन त्रास कहा, जो चरण गुरु चितलावत है। निर्मल नाम सदा परपूर्ण, शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर। गहर गंभीर अथाह अत बड़ सुबर, सदा सब बेदर्त नागर। संत मराल करै कंतूहल, तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कल जुग दुर्त दूर कर बे कौ, दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जाको मन ध्यान तरै फिरत सगल जुग, कब होक को उपावै आत्म प्रगास कौ। वेद बाणी सहत बरंच जस गावै जाको, शिव मुन गहे नात जात कबलास कौ। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप, जटा जूट पेख किए फिरत उदास कौ। सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी, नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास कौ। नाम निदान ध्यान अंतर्गत, तेज पुंज तिहो लोग प्रगासे। देख दर्श पटक प्रम पजत, दुख परहर सुख सहज बेगासे। सेवक सित सेवक सिख सदा अतलुबत, आलस मुह जो कुसम सुभासे। विद्यमान गुर आप थप्यो थिर, साचो तख्त गुरु रामदास। तार्यो संसार माया मद मोहत, अमृत नाम दियो समरथ। फुन कीर्तवंत सदा सुख संपत, रिद अर सिद्ध न छोड़े साथ। दान बड़ो अतवंत महाबल, सेवक दास कयो एहो तथ। ताहे कहा परवाह काहू की, जा कै बसीस धरयो गुर हथ। तीन पवन पर पूर रहयो सोई, अपन सरस कियो ना जगत कोई। अपने आप ही ओ पायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुरे असुर नर, गण गंधर्व खो जंत फिरे। अब नासिया चाला जोनी संपाओ, पुरखोत में आपार परे। करण कारण समरथ सदा सोई, सर्व जी मन त्यायो। श्री गुरु रामदास जयो, जय जग में तैं हर परम पद पायो। सतगुरु नानक भगत करी, एक मन तन मन धन गोबिंद दियो। अंगद अनंत मूर्त निज तारी, अगम ज्ञान रस रसयो ही। गुर अमरदास करतार।

नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा पुब भगत हर के जुगण अमरीक जय देव त्रिलोचन नामा अवर कबीर पण तिन को अवतार भयो कल पिंतर जस जगत्र पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तै हर परम पद पायो मनसा कर स्मरंत तुझै नर काम क्रोध मिट्यो जो तिन बाचा कर स्मरंत तुझै तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण कर्म कर तो दर्श परस पारस सरबल भट्ट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तै हर परम पद पायो जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खेन जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै जे सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नवनिद पावै सोई रामदास गुरबल पाण मिल संगत तन तन करो जे सतगुर लग प्रपाई है सो सतगुर सिमरो न रो जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत ना छोड़ियो पास ताते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नास कव कीर्त जो संत चरण मुड़ लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिव अंगद अंग संग नानक गुर तिव गुर अमरदास कै गुर रामदास जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निसबासर हर चरण निवास ताते संगत सगन पाए पौ मान तुम मली अगर प्रगट सुबास ध्रुव प्रहलाद कबीर त्रिलोचन नाम लैत उपजो जो प्रगास जिह पिखत अत होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास नानक नाम निरंजन जाना कीनी भगत प्रेम लिव लाई ताते अंगद अंग संग पयो सायर तिन शब्द सुरत की नींव रखाई गुर अमरदास की अकथ कथा है एक जी कश कही ना जाई सोडी सिरिट सगल तारन कहो अब गुर रामदास कहो मिली बढ़ाई हम अब गुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखै बिख

एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई। मोह मल बिवस कियो काम गै केस पछाड़ियो क्रोध खंड प्रचंड लोभ अपमान स्यो चाड़ियो। जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सो मन्नै पव सागर बंदेओ सिख तारे सो प्रसन्नै। सिर आत पात सचो तखत जोग भोग संजुत बल गुरु रामदास सच सल पाण तू अटल राज या पग दल। तू सतगुर चहु जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरै तुर। आद जुगा ध्यानाद कला तारी त्रे लोवै अगम निगम उदरन जरा जम्मै आरोवै। गुर अमरदास थिर थपे आओ परगामी तारण तरण अग अंतक बदै ना सल कव गुर रामदास तेरी सरण। सवैये महले पंजवें के एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरंग सोई पुरखा चल अबनासी जे सिमरत दुरमत बलनासी। सतगुर चरण कवल रितारं गुर अर्जन गुण सहज विचारं। गुर रामदास कर कियो परगासा सगल मनोरथ पूरी आसा तैं जनमत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो कल जोड़ कर सुजस वखाण्यो। भगत जोग कौ जय तवार हर जन क्यो पायो शब्द गुरु प्रकाश्यो हर असन बसायो। गुर नानक अंगद अमर लाग उत्तम पद पायो गुर अर्जन कर गुर रामदास भगत उतर आयो। बड़ भागी उन मान्यो रिद शब्द बसायो मन मानक संतोखियो गुर नाम दृढ़ायो। आगम्या गोचर पार ब्रह्म सतगुर दरसायो गुर अर्जन कर गुर रामदास अनपौ ठहरायो। जनक राज बरताया सतयुग आलीना गुर शब्दे मन मान्या अपतीज पतीना। गुर नानक सच नीम साज सतगुर संग लीना गुर अर्जन कर गुर रामदास अपरंपर बीना। खेल गूड़ो कियो हर राय संतोख समाचरियो बिमल बुद्ध सतगुर समाणो। आजोनी संभव्यो सो जस कल कवि अण बखाण्यो। गुर नानक अंगद वरियो गुर अंगद अमर निधान गुर रामदास अर्जन वरियो पारस परस प्रमाण। सद जीवन अर्जन अमोल आजोनी संभव पै पंजन पर दुख निवार आपारिया नम पौ। अगै गहन परम्पांत दहन शीतल सुखदाताओ असंपव उदव्यो पुरख पूर्ण विधाताओ। नानक याद अंगद अमर सतगुर शब्द समायो तन तन गुर रामदास तन तन गुर रामदास गुर जिन पारस परस में लायो। जय जय कार जास जग अंदर मंदर भाग जुगत शिव रहता गुरपूरा पायो वड भागी लिव लागी मेदन पर सहिता। पै पंजन पर पीर निवारण कल सहार तोहे जस भगता कुल सोडी गुर रामदास तन धर्म तुजा अर्जन हर भगता। त्रम तीर गुरमत गंभीर पर दुख बिसारण शब्द सार हर सम उदार अहमेव निवारण। महादान सतगुर ज्ञान मन चाओ ना हुटै सतवंत हर नाम मंत्र नव निद नानक हुटै। गुर रामदास

एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला नावा गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकार्थ कीन कहो नानक हर भज मना जेह बिद जल कौ मीन बिख्यन स्यों काहे रचियो निमख ना होहे उदास कहो नानक भज हर मना परै न जम की फास तरना पो यों ही गयो लियो जरा तन जीत कहो नानक भज हर मना औद जात है बीत बिरद भयो सू

तन तन संपै सुख दियो आर जेह नीके ताम कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहे नाराम। सब सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोए कहो नानक सुन रे मना तह सिमरत गत होए। जह सिमरत गत पाई है तेह पजरे तै मीत कहो नानक सुन रे मना औद कटत है नीत। पांच तत् को तन रचियो जन

कट कट में हरजू बसै संतन कहो पुकार कहो नानक ते भज मना पौने दे उतर है पार। सुख दुख जेह पर सह नहीं लोभ मोह अभमान कहो नानक सुन रे मना सो मूर्त भगवान। उस्तत निंदया नाहे जेह कंचन लोहो समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान। हरख सोग जा कै नहीं बैरी मीत समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे

कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। जे बिखिया सगली तजी, लियो पेख बैराग, कहो नानक सुन।

और न लेत उधार। जो सपना अर्पेख ना ऐसे जग को जान, इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। निस्दिन माया कारने प्राणी डोलत नीत, कोटन में नानक को नारायण जह चीत। जैसे जलते बुध बुदा उपजय बिन सह नीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। प्राणी कशु ना चेतई मद माया कै अंद, कहो नानक बिन हर भजन परत ताहे जम फंद। जो सुख को चाहे सदा सरन राम की ले है, कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख दे है। माया कारण ता वही मूर्ख लोग या जान, कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। जो प्राणी निस दिन पजै रूप राम तह जान, हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान। मन माया मैं फद रहयो बिसरयो गोविंद नाम, कहो नानक बिन हर

कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए। जन्म जन्म परमत फिरयो मिट्यो न जम को त्रास, कहो नानक हर भज मना निरपै पावै बास। जतन बहुत मैं कर रहे हो मिट्यो न मन को मान, दुर्मत स्यो नानक फदयो राख लेहो भगवान। बाल जवानी अर बिरद फुन तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सभी मान। करणो हो तो सोना कियो परयो लोभ कै फंद, नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंद। मन माया में रम रहे हो निकसत नाहिन मीत, नानक मूर्त चित्र ज्यों शाड़त नाहन पीत। नर चाहत कश और की और पई, चितवत रहे उठ गौर नानक फासी गल परी। जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो ना कोए, कहो नानक सुन रे मना हर पावै सो होए। जगत पिखारी फिरत है सबको दाता राम, कहो नानक मन सिमरत है पूर्ण होवै काम। झूठे मान कहां करे जग सुपने ज्यों।

गर्व करता है देह को बिन सैशन में मीत, जह प्राणी हर जस कहो नानक तेह जग जीत, जेह कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान, तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जह प्राणी कह नाहे मन, जैसे सुकर स्वान नानक मानो ताहे तन। स्वामी को गृह ज्यों सदा, स्वान तजित नहीं नित, नानक एह बेदहर पायो एक मन होए एक चित। तीर्थ वर्त अरदान कर मन में तरै गुमान, नानक ने फल जात तह ज्यो कुंचर इशनान। सिर कंपियो पग डग मगे नैन ज्योत ते हीन, कहो नानक यह बिद पई तऊ नहर रसलीन। निज कर देखियो जगत में को काहू को नाहे, नानक थिर हर भगत है तह राखो मन माहे। जग रचना सब झूठ है जान लेहो रे मीत, कह नानक थिर नारा।

जो अनहोनी होए, एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। जो उपजियो सो बिरस है, परों आज कह काल, नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजाल। दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे, कशु न होत उपाय, नानक सब किश तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। संग सखा सब

राम नाम उर मैं गयो जाके सम नहीं कोए, जेह सिमरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए। मुंदावणी महला पंजवा, थाल विच तिन वस्तु पईयो सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकर का पयो जिसका सबस आधारो। जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। एह वस्त तजी नह जाई नित नित रखी उतारो। तम संसार चरण लगतरी है सब नानक ब्रह्म।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप आठो नंदन प्रथम राग पैरो वै करही पंच राग नी संग उचरही प्रथम पैर भी बेलावली पुनिया की गावे बंगली पुन असलेखी की पई बारी ए पैरों की पंचो नारी पंचम हरख दिशाख सुनावे बंगालम मदमाद वगावे ललत बिलावल गावही अपनी अपनी पांत अष्टपुत्र भैरव के गावह गायन पात्र द्वितीया माल कौशकिया लाप संग रागनी पांचौ थाप गोंड करी अर देव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी तनासरी ए पांचौ गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग मेवारा परबल चंड कौशक ओ भारा खौ खटियौ पौरा नद गाए अष्टमाल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंचनार संग अष्ट सुत उठह तान कलोल गायन तार मिला वही ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहीरी लै पार जा संग लाई पांचो वार जा सुरमानंद पास कर आए चंद्रबिंब मंगलन सोहाए सरस बान औ आहे बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्टपुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी

संग दीपक के थाप कालंका कुंतल और अम्मा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कानरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राघव गावे पांचों संग बरंगन लावे बैरारी करनाटी तरी गवरी गावे आसावरी तेह पाछ सिंधवी आलापी श्री राग स्यो पांचों थापी सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर खष्ट मेघ राग वै गावे पांचों संग बरंगन लावे सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावे आसा गुन गुनी ऊचे सुरसू हो पुन कीनी मेघ राग स्यो पांचों चीनी बैरा तार गज तार के दारा जबली तार नट औ जल तारा पुन गावे शंकर औ श्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा खष्ट राग

अरदास एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लई ते आए फिरंगत गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठ शब्द खुजाए तेग बहादुर सिमर है कर नौन दे आवै ताए सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पंथ दे वाली सब थाई हुई सहाय दसा पातशाहियां के स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। गुरु साहिब जी दे पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्हां ने तेरा नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाही तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेसी दिते बंद बंद कटवाए चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। आप जी दे गुरसिखां नूं गुरसिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान आप जी दे गुरसिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पतकार आखा आप अकाल पुरख वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु नाम चितावै चितावन का सदका सर्व सुख होवै बिरद की पैज रहे पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। हे महाराज श्री निरंकार ज्योति स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी दसा पातशाहियां के स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर ऐस वक्त अरदास बेनती है आप जी ने महान बख्शिश कीती है पातशाह जीओ आप जी दा ओट आसरा लैंदिया होया सेवक परिवार ने सहज पाठ आरंभ करवाया सी सहज पाठ दी सीडी दी सेवा कीती है सीडी बनाण दी सेवा करदिया अनेका भुलां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है पाठ दा फल सेवक परिवार नूं बख्शण दी कृपालता करनी जी पाठी सिंह पासों पाठ करदिया अनेका भुलां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है बख्शण दी कृपालता करनी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी ने महान बख्शिश कीती है सहज पाठ दी निर्विघ्नता सहित समाप्ति होई है सेवक परिवार वालों आप जी नूं सोहणे रुमाले पछाके हाजिर होए हन आप जी ने अंगीकार करने सेवकां दे पर्दे कजने सेवक परिवार नूं गुरसिखी ते नामदान दी दात बख्शिश करनी पातशाह चढ़दियां कला बख्शिश करनियां पातशाह कारोबार च बरकतां पाउणियां अंग संग सहाई होना छे पौड़ियां आनंद साहब दा पाठ होया बाणी पढ़ी सुनी सचखंड विखे प्रवान करनी बाणी दा भाव सेवक परिवार दे हिरदियां विखे वसाउणा सेवक परिवार वालों पवित्र कड़ाह प्रसाद दी देग ते लंगर हाजिर है आप जी दर ते प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते जो छके आप जी दा पवित्र नाम जपे सुख होवे नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह दोहरा

मान्यो प्रगट गुरा की देह, जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द में ले, राज करेगा खालसा आकी रहे न कोए ख्वार।

0: बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, सो कहो टल गुर सेवी है, अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसे है गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। टोडी महला पंजवा, माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवे, हर सिमरत बिनसै सब दुख। माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवे, हर सिमरत बिनसै सब दुख। रहाओ कोट जन्म के किल बिख नासै, सिमरत पावन तन मन सुख, देख स्वरूप पूर्ण भई आसा, दर्शन भेटत उत्तरी भुख। चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

मिलै वडियाई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाई है, इकना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है।

असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मुह पख सार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक बार जो तुद पहावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवट हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे।

अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापार ये अमूल भंडार अमूल आवहे अमूल ले जाहे अमूल पाए अमूला समाहे अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल प्रवाण अमूल बख्शीस अमूल निशान अमूल कर्म अमूल फुरमान अमूलो

भरपूर। तिथै सीतो सीता मैं मामा है, ता के रूप ना कथने जाहे। ना उह मरहै ना ठगे जाहे, जिन कै राम वसै मन माहे। तिथै भगत वसै के लो, करहै आनंद सच्चा मन सोए। सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल।

भाव हर त्यावहु संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तुम कट कट अंतर सर्व निरंतर जी।

जिन निरपहो जिन हर निरपहो त्याया जी तिनका भो सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे

एक पास गंध वेन सहस्ताव गंध एव चलत मोही सब मह जोत जोत है सोए तिस दै चानन सब मह चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोत इस पावे सो आरती होए हर चरण कवल मक

तिन मुख तिके निकल है जिन मन सच्चा नाउ कर्म मिले ता पाई नाहीं गली वाओ दुआ एक आवह एक जाहे उठ

सुख होए, ज्यों पावे त्यों राख तू, मैं अवर न दूजा कोए रहाओ। आ गए देखो डों जलै पाछे हरियो अंगूर, जिसते उपजै तिसते बिनसै घट घट सच भरपूर। आपे मेल मिलावही साचै महल हदूर साह।

जिस सतगुर पुरख ना भेट्यो सो भाव जल पचाय पचाय यो मानक जियो निर्मोल है यो कौडी बदलै जाय जिन्ना सतगुर रस मिले से पूरे पुरख सुजान गुर मिल भाव जल लंघी है।

मोह अभिमान आत्म राम पछाणिया सहजे नाम समान बिन सतगुर मुक्त न पाई मन मुख फिरे दीवान शब्द न चीन कथनी बदनी करे विख्या माहे समान।

जपिए अमृत नाम जन्म मरण दुख काटिए लागे सहज ध्यान मेरे मन प्रभु शरणाई पाए हर दिन दूजा को नहीं एको नाम त्याए रहाओ कीमत कहन न जाइए सागर गुणी अथाह वडभागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाह कर सेवा सुख सागर सिर शाह पातशाह चरण

अपार सखा सहाई अत वड्डा ऊंचा वड्डा अपार बालक बिरद ना जानिए निश्चल तिस दरबार जो मंगिया सोई पाई निधारा आधार जिस पेखत किल विख हिरह मन तन हो वह शांत एक मन एक त्याई है मन की लाह प्रांत गुण निदान नव तन सदा पूर्ण जाकी दात सदा सदा आराधिय दिन विसरो नहीं रात जिन

नाम अमृत नदर निहाल, मन मेरे सदगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी, एक निमख न मनहु विसार। रहा

थान थंतर रव रहया प्रभ मेरा परपूर सच पातशाही अमर सच सच्चे सच्चा थान सच्ची कुदरत धारियन सच सिरजोन जहान नानक जपिया सच नाम हों सदा सदा कुर्बान श्री राग महला पंजवा।

साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ कर कृपा प्रभ पेटिया मरन ना आवन जाओ मेरे मन हर भज सदा एक रंग घट घट अंतर रव रहया सदा सहाई संग रहाओ सुखां की मित क्या गणी जान सिमरी गोविंद जिन चाख

राजन रिंद अवसर हर जस गुण रमन जित कोट मजन इशनान रसना उचरै गुणवती कोई न पुजै दान दृष्ट तार मन तन वसै दयाल पुरख मेहरवान।

गुड़ जेवड़ अवर न कोय, दूजा थाओ न को सुजै, गुड़ मेले सच सोए रहाओ। सगल पदार्थ तिस मिले, सगल पदार्थ तिस मिले, जिन गुर डिठा जाए, गुर चरणी जिन मन लगा, सेवड पागी माए। गुरदाता समरथ गुर, गुर सब मह रहया समाए, गुर परमेश्वर पार ब्रह्म, गुर डुबदा लय तराए। कित मुख गुर साला ही है, करण कारण समरथ, से मथे ने चल रहे, जिन गुर तारिया हाथ। गुर अमृत नाम पिया लिया, जन्म मरण का पाथ, गुर परमेश्वर सेविया, पै भंजन दुख लथ। सतगुर गहर गंभीर है, सुख सागर अगखंड, जिन गुर सेविया अपना, जमदूत न लागे डंड। गुर नाल तुल न लगई, खोज डिठा ब्रह्मांड, नाम निधान सतगुर दिया, सुख नानक मन महमंड। श्री राग महला पंजवां।

जाए। गुर के चरण मन मह त्याए, छोड़ सगल सियाण पा, साज शब्द लिबलाए रहाओ। दुख क्लेश ना पौ ब्यापै, गुर मंत्र हृदय होए, कोट जतना कर रहे, गुर बिन तरयो ना कोए। देख दर्शन मन साधारे, पाप सगले जाहे, हौं तिन कै बलिहारने, जे गुर की पैरी पाहे। साध

करणी सार आप छोड़ सब होए रेणा जिस देव प्रभ निरंकार जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार श्री राग महला पंजवां।

पद पुरख सुजाना रहाओ। मान अभिमान मंधे सो सेवक नाही, तत समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही। कहन कहावन इहो कीरत करला, कथन कह

सभी मद सब है ते बाहर बेमोहताज बापा पिता हों जानो नाही तेरी कवन जुगता बंधन।

हथ वडियाइयां पूर्व लिखिया पाए सच करता सच करण हार सच साहिब सच टेक सचो सच बखाणिए सचो बुद्ध विवेक सर्ब निरंतर रव रहया जप नानक जीवै एक श्री राग महला पंजवा।

सच्चा नाम सास गिरास ना विसरै सफल मूर्त गुर आप गुर जीवड अवर न दिसई आठ पहर तिस जाप नदर करे ता पाईए सच नाम गुणतास।

नानक गुर शरणागति मरै नहावै जाय। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग महला पहला घर पहला अष्टपदियां आख आख मन भावना ज्यों ज्यों जापै वाए जिसनो वाए सुनाई है सो केवड़ कित थाए आखण वाले जेतड़े सब आख रहे लिवलाए बाबा अल्लाह।

दर दर वेश रसीद बरकत तिन कौ अगली पढ़ दे रैन दरूद बरकत तिन कौ अगली पढ़ दे रहन दरूद पुछ ना साजे पुछ ना टाहे।

सच्चो सच्चा आखिए सच्चे सच्चा थान जिन्नी सच्चा मन्या तिन मन सच ध्यान मन मुख सूचे जानी है गुरमुख जिन्ना ज्ञान।

हुक्मी साच समाहे, नानक जो तिस पावै सो थियै, इन्ना जनता वस किश नाहे। श्री राग महला पहला, मन झूठै तन झूठ है, जिहवा झूठी होए, मुख झूठै झूठ बोलना, क्यों कर सूचा होए। बिन अब शब्द न मांजियै, साचे ते सच होए। मुंधे गुणहीनी सुख के, तिर रलियां रस मानसी, साच शब्द सुख ने रहा। फिर परदेसी जे थियै, धन वांढी चूरे, ज्यों जल थोड़ै मछली, करन पलाव करे। फिर भावै सुख पाई।

श्री राग महला पहला गुर ते निर्मल जानिए निर्मल दे शरीर निर्मल साचो मन वसै सो जाने अब पीर सहजे

नानक शब्द पछाणिए हौमै करे ना कोई। श्री राग महला पहला बिन पिर धन सिंगारिए जोबन बाद खुआर। ना माने सुख से जड़ी बिन पिर बाद सिंगार। दुख कणो दोहागणी ना कर सेज पतार। मान रे राम जप हो सुख हो बिन गुर प्रेम न पाई है। शब्द मिले रंग होए रहाओ गुर सेवा सुख पाई है। हर वर सहज सिंगार सच माने तिर से जड़ी गूड़ा हेत प्यार। गुरमुख जान सियाणिए गुर मेली गुण चार। साच मिलहो वर कामणी पिर मोही रंग लाए। मन कन साच विगस्या कीमत कहन ना जाए। हर बार

आहार संत सबा सुख उपजय गुरमुख नाम आधार खिन मह उपजय खिन खपै खिन आवै खिन जाए शब्द पछाणै।

पीर रे मन ऐसी हर्ष्यो प्रीत कर जैसी चात्रक में सार पार थल हरियावले एक बूंद न पवै खे सार पार थल हरियावले।

तेरे मल बिन गुर प्रीत ना उपजै होमै मैल ना जाए सोहं आप पछाणिए शब्द भेद पति आए गुरमुख आप पछाणिए।

नानक तरियै सच नाम सिरशाह पातशाह। मैं हर नाम ना विसरै हर नाम रतन बेसाह। मनमुख पौजल पच मोए गुरमुख तरे अथाह। श्री राग महला पहला घर दूजा

पहले पहले स्तर है अष्टपदियां, श्री राग महल्ला तीजा। कर पहला अष्टपदियां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुरमुख कृपा।

मनमुख पत गवाई, बिन सतगुर को मग न जाने अंधे ठौर न काई, हर सुखदाता मन नहीं वसिया अंत गया पछताई। तेई अड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया, आन दिन भगत करह।

पंखी बिरख सुहावड़े उड़ है चौदस जाए, जेता उड़ है दुख कणे नित दाज है तै दिल लाहे। बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे, गुरमुख ब्रह्म हरियावला साचै सहज सुभाए। शाखा तीन निवारिया एक शब्द लिवलाए, अमृत फल हर एक है आपे देखवाए। मनमुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना छाऊ, तिन्ना पास न बैसिए ओना कर ना गिराऊ। कटिय है तै नित जालिय है ओना शब्द।

समाए, हर निर्मल अत उजला बिन गुर पाया ना जाए, पाठ पढ़े ना बुझई भेखी परम भुलाए, गुरमति हर सदा पाया, रसना हर रस

ब्रह्म जाय। नाम पदार्थ पाई गुरमुख सहज सुभाए, बिन गुर गुण ना जापनी, बिन गुण भगत ना होए, भगत वसल हर मन वसया, सहज मिलया प्रभ सोए। नानक शब्दे हर सा लाहिए, करम प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा, माया मोह मेरे प्रभ कीना, आप भरम पुलाए। मन मुख कर्म करह नहीं बूझ है, बिरथा जन्म गवाए। गुरबाणी इस जग मह चा

जाता। प्रभ निकट वसै सबना कट अंतर गुरमुख विर ले जाता। नानक नाम मिले वडियाई गुर कै शब्द पछाता। श्री राग महला तीजा

शब्द जीवत मरै गुरमुख भव जल तरणा वड्डै भाग नाउ पाइयै गुरमत शब्द सुहाई आपे मन बसिया प्रभ करता सहजे रहया समाई एक ना मनमुख शब्द न पावे।

सतगुर शरणा सतगुर सच दिढ़ाया सदा सच संयम रहना सतगुर सच्चा है बोहिथा शब्द पवजल तरना लख चौरासी फिर दे रहे बिन सतगुर मुक्त ना होई पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके दूजे पाए पत खोई सतगुर शब्द सुनाया।

जांको चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग ग्रिस्त कुटांब पलेटिया कदे हरख कदे सोग गौण करे चहु कुंट का।

जियो हो सतगुर बिट हो कुमाया जिन भ्रम भुला मार्ग पाया नदर करे जे अपनी आपे लै रलाए जियो तू सबना माहे समाया तिन करतै आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जां कौ जोत धरी करतार जियो आपे खसम निवाजया जियो पिंड दे साजया अपने सेवक की पैज रखिया दुए कर मस्तक धार जियो।

करम धर्म नहीं पूजा। नानक पाए भगत निस्तारा, दुविधा व्यापै दूजा। तीजै पहरै रैण कै वणजारिया मित्रा, सरहंस उलथड़े आए। जोबन घटै जरुआ जणै, वणजारिया मित्रा। आम घटै दिन जाए, अंत काल पछतासी। अंधले जां जम पकड़ चलाया।

खांडवर पांड हर सोभा होई इहो दान ना रलै रलाया होर मन मुख दाज जे रख दिखा लै सो कूड़ अहंकार कच पाजो हर प्रभ मेरे बाबूला हर देव हो दान मैं दाजो हर राम राम मेरे बाबूला फिर मिल तन वेल वदंदी हर जुग है जुगो

गोविंद नाम संभाले, मन प्यारिया जी मित्रा हर निभै तेरे नाले, संग सहाई हर नाम प्याई बिरथा कोई न जाए, मन चिंदे से ही फल पावे चरण कमल चित लाए, जल थल पूर रहया बनवारी घट घट नदर निहाले, नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग भ्रम जाले, मन प्यारिया जी मित्रा हर बिन झूठ पसारे।

दुख मिटाया, चित्र गुप्त का कागद फारिया, जम दूता कछु न चली, नानक सिख दे मन प्रीतम, हर लदे खेप सवली, मन प्यारिया जियो मित्रा, कर संता संग निवासो, मन प्यारिया जियो मित्रा, हर नाम जपत परगासो, सिमर

सतगुर तुठे लड़ली ने लाए नौ निद पाए नाउ सर्वस ठाकुर दीना नानक सिख संत समझाई हर प्रेम भगत मन लीना श्री राग के।

नानक सतगुर भेटते संत। तेरे बचन अनूप अपार संतन आधार, बाणी बिचारिय जियो सिमरत सास गिरास, पूर्ण विश्वास क्यों मनहो बिसारिय जियो, मनहो क्यों मनहो बिसारिय।

जस नानक आप सुनियो हे संत। प्रेम ठगौरी पाए रिझाए, गोविंद मन मोहया जियो। संतन कै प्रसाद अगाध कंठे लग सोहया जियो। हर कंठ लग सोहया, दोख सब जोहया। भगत लखियन कर बस पए, मन सर्व सुख बुठे। गोविंद तुठे, जन्म मरना सब मिट गए।

हर रंग रत हर त्याव हो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ जिनको पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास सेवक पाए बन जारिया मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास तन तन वणज।

आया यकना सच बुझायोन तिना अतुट भंडार देवाया। हर चेत खाहे तिना सफल है अचेता हथ तडाया। श्लोक महला तीजा। पढ़ पढ़ पंडित वेद बखान है माया मोह सुआए। दूजा पाए हर नाम विसारिया मन मूर्ख मिले सजाए। जिन जियो पिंड दिता तिस कब हूं ना चेतै। जो देंदा रिजक संबाहे जमका फाहा गल हो न कटी है फिर आवै जाए। मन मुख किशु न

कमाए कूड़ कुसात कमाए गुर प्रसादी मन जने हर से तीले बलाए। नानक गुरमुख सच कमावे मन मुख आवे जाए पौड़ी। हर के संत सुनहु जन पाई हर सतगुर की एक साखी। जिस तुर भाग होवे मुख मस्तक तिन जन लै हृदय राखी। हर अमृत कथा श्रेष्ठ उत्तम

लाए विच हो आप गवाए कह रहन सच लिव लाए सतगुर जिनी ना सेवे तिन्ना बिरथा जन्म गवाए नानक जो तिस पावै सो कर।

निदान है कर्म प्राप्त होए। सच रते गुर शब्द स्यों तिन सच्ची सदा लिव होए। नानक जिसनों मेले ना बिछड़े सहज समावै सोए महला।

कनक कलश एक पाया, तिसमह तार चुवै अत निर्मल, रसमह रसन चुआया। एक जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजिया, तीन पवन में एको जोगी, कहो कवन है रा।

प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, हम बारिक दीन करहो प्रतपाला। मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा, गुर जल मिल कमल।

जन नानक गुर मिल रहसै जियो। माज महला चौथा, हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए। मिल सतसंगत हर गुण गाए, जग भौजल दुत्तर तरिए जियो। आओ सखी हर

अमृत रस सच अमृत बोली गुर पूरै अमृत लीचै जियो हर सत संगत सत पुरख मिलाइए मिल सत संगत हर नाम ते आइए नानक हर कथा सुनी मुख बोली गुरमत

मिलिए प्रिया तुद भगवंता। मोहे रहन ना बिहावे, नींद ना आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो। हों कोली जियो कोल कुमहाई, तिस सच्चे गुर दरबारे जियो। रहाओ भाग होवा गुर संत मिलाया, प्रभ अविनाशी कर्म है पाया। सेव करी पल चसा न बिछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे।

तू आपे गुरमुख मुक्त कराए हैं, तू आपे मनमुख जन्म पवाए हैं। नानक दास तेरे बलिहारे, सब तेरा खेल दसहरा जियो। माज महला पंजवा, अनहद वाजै सहज सुहेला, शब्द आनंद करे सद केला। सहज गुफा महताड़ी लाई, आसन ऊच सवारिया जियो। फिर घिर अपने ग्रह में आया, जो लोड़ींदा सोई पाया। तृप्त अगाए रहया है संत हो, गुर अनुभव पुरख दिखारिया जियो। आपे राजन आपे लोगा, आप निर्वाणी आपे भोगा। आपे तख्त बह सच न्याई, सब चूकी कूक पुकारिया जियो। जेहा डिठा मैं ते हो कहया, तिस रस आया जिन भेद लहया।

भाग बनाया, तित कर सखिए मंगल गाया, आनंद बिनोद तितै कर सोह है, जो धन कंत सिंगारी जियो। सागुणवंती सा वडभागण, पुत्रवंती सीलवंत सोहागण, रूपवंत सा सुगड़ विचखण, जो धन कंत प्यारी जियो। अचारवंत साई परधाने, सब श्रृंगार बने तिस ज्ञाने, सा कुलवंती सा सबराई, जो पिर कै रंग सवारी जियो। महिमा तिसकी कहन ना जाए, जो पिर मेल लई अंग लाए। थिर सुहाग वर अगम अगोचर, जन नानक प्रेम साधारी जियो। माज महला पंजवा, खोजत खोजत दर्शन चाहे, भांत भांत बन बन अवगाहे।

धरती परमाता एक खिन हृदय शांत ना आवै जोगी बहुड़ बहुड़ उठता वै जियो कर कृपा मोहे साद मिलाया मन तन शीतल धीरज पाया प्रभ अविनाशी बसिया कट पीतर हर मंगल नानक गावै जियो माज महला पंजवा पार ब्रह्म अपरंपर देवा अगम अगोचर अलख अपेवा दीन दयाल गोपाल गोविंदा हर त्यावह गुरमुख गाती जियो गुरमुख मधुसूदन निस्तारे गुरमुख संगी कृष्ण मुरारे दयाल दमोदर गुरमुख पाइये होरत कितै न भांति जियो निरहारी केशव निरवैरा कोट जना जाके पूजहै पैरा गुरमुख हृदय जा कै हर हर सोई भगत एकांति जियो अमोग दर्शन बेअंत अपारा वड समरथ सदा दातारा गुरमुख नाम जपियै तित तरियै गत नानक विरली जाती जियो माज महला पंजवां।

सिमरत नाम सदा सुहेला, जिस देवै दीन दयाला जियो। सतगुर मेरा वड समरथा, जिये समाली तां सब दुख लथा। चिंता रोग गई हों पीड़ा, आप करे प्रतपाला जियो। बारिक वांगी

अतोले अकाल मूर्त अजूनी संपो मन सिमरत ठंडा थीमा जियो। सदा संगी हर रंग गोपाला ऊंच नीच करे प्रतपाला नाम रसायन मन तृप्तायन।

तुम दाते तुम पुरख विधाते तुम समरथ सदा सुख दाते सबको तुम ही ते बरसावे अवसर करो हमारा पूरा जियो।

खीर अगावै ज्यों निर धन धन देख सुख पावै त्रिखावंत जल पीवत ठंडा त्यों हर संग इहो मन पीना जियो ज्यों अंधियारै दीपक परगासा भरता चितवत पूरन आसा मिल प्रीतम ज्यों होत आनंदा त्यों हर रंग मन रंगीना जियो संतन मोको हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गिजाया हर हमरा हम हर के दासे हर हमरा हम हर के दासे नानक शब्द गुरु सच दीना जियो माज महला पंजवां अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बिडारन हरिया अवर साध चख सगले देखे।

साहिब भावै सेवक अंतर बाहर माहर जियो तू दाना ठाकुर सब बिद जान है ठाकुर के सेवक हर रंग मान है।

विचारा आनंद विनोद करे दिन राती सदा सदा हर के ला जियो जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया साध कृपा ते सूका हरिया।

दर्शन पेखा से कर भले जिनी हर जस लेखा से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले हौ बल तिन संग पछाणा जियो सुन साजन मेरे मीत प्यारे साध संग खिन माहे उधारे किल विख काट होवा मन निर्मल मिट गए आवन जाना जियो किल विख काट होवा मन निर्मल मिट गए आवन जाना जियो दोए

पंजवां अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै परम गत मेरी जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो सुख भया दुख दूर पराना संत रसन हर नाम बखाना जल थल नीर भरे।

गुण निदान अमृत हर नामा हर त्याए त्याए सुख पाया जियो मनसा तार जो करते आवे साध संग जन्म मरण मिटावे आस मनोरथ पूर्ण होवे पेटत गुरदर साया जियो अगम अगोचर किश्मित नहीं जानी साधक सिद्ध त्याव है ज्ञानी।

सो सच स्वामी, रिजक सब सकौ दिए जियो। नाम जपत सर्व सुख पाई, सब पौ बिनसै हर हर त्याई।

प्रभ नानक सर्ब समाहया जियो माज महला पंजवा सो सच मंदर जित सच त्याई है सो रिदा सुहेला जित हर गुण गाई है सा धरत सुहावी जित वसह हर जन सच्चे नाम बिटहु कुर्बानो जियो सच बडाई कीम ना पाई कुदरत कर्म न कहना।

सबल एहा है कारी जियो, दृष्ट तार अपना दास सवारिया, कट कट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया, एक सविण होर दूजा।

जाप अलख अपेवा काम क्रोध किलबिख गुर काटे पूर्ण होई आसा जियो पूर्ण भाग पय जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पाणी नानक नाम वस्या।

सो गुर मिल निहचल कहना। प्रेम भगत जिस कै मन लागी, गुण गावै अन दिन नित जागी। बहा पकड़ तिस स्वामी मेलै, जिस कै मस्तक लहना। चरण कमल भगता मन बुठे, विण परमेश्वर सगले मुठे। संत जना की धूड़ नित बांछ है, नाम सच्चे का गहना। उठत बैठत

मोह चुका बनिया हो वारी जीओ वारी सतगुर कै बलिहारणिया गुरमती प्रगास होवा जी अन दिन गुरमती प्रगास होवा जी।

मनमुख पाप पजा बनिया एक रंग राते जो तुद आप लिव लाए पाए भगत तेरे मन पाए सतगुर सेवन सदा सुखदाता सब इच्छा आप पुजा बनिया हर जियो तेरी सदा शरणाई आपे बख्शहिंदे वडियाई।

तिल विख अवगण का टणहारा प्रेम प्रीत सदा त्याई है पै पाए भगत दृढ़ा बणिया तेरी भगत सच्ची जे सच्चे पावे।

आनदिन सार संभाल हर राखे गुरमुख सहज समावने आम। तुद जेवड मैं होर ना कोई तुद आपे सिरजी आपे गोई तू आपे ही कड़ भन्न सवार है।

मानमुख मुगद करह चतुराई नाता तोता थाए ना पाई जेहा आया तेहा जासी कर अवगण पछोता बनिया मानमुख अंधे किशु ना सूझ मरण लिखाए आए नहीं बूझे मानमुख कर्म करे।

अमृत मन तन बाणी रत्ता अमृत सहज सुना बनया मन मुख भूला दूजै भाए खुआए नाम न लेवै मरै बिख खाए आन

नानक नाम सलाहे सदा तू गुरमुख मन वसावणिया माज महला तीजा गुरमुख मिले मिलाए आपे काल न जो है दुख न संतापे हो मैं मार बंधन सब तोड़े गुरमुख शब्द सुहावणिया।

जय शब्द पछाण गुरमुख मरे ना काल ना खाए गुरमुख सच समावणे गुरमुख हर दर शोभा पाए गुरमुख विच हो आप गवाए आप तरह कुल सगले तारे गुरमुख जन्म सवारणे गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर गुरमुख हो मैं चूके पीर गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागे गुरमुख सहज समावणे गुरमुख नाम मिले वडियाई गुरमुख गुण गावे शोभा पाई सदा आनंद रहे दिन राती गुरमुख शब्द करावणे गुरमुख

अंधियारा गुरमुख बूझ हर गावणिया अकथो कथिया शब्द सुहावै गुरमती मन सचो पावै सचो सच रवह दिन राती इह मन सच रंगावणिया।

कौन कर्म कौन निष्कर्मा, कौन सो कहै कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सनमुख कौन वे मुखिया, किन बिद मिल

गुरमुख कर्म गुरमुख निह कर्मा, गुरमुख करे सो सुभाए जियो। गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरमुख मिलिया।

ही हंत दिन रहन जिसना विसरै सो हरिया होवै जंत सर्व कला प्रभ पूर्णो मन निमाणी थाओ हर ओट।

राती गुरमुख रंग चलूलिया रंग हर रंग राती सो सेव हो सत निरंजनो हर पुरख बिधाती तू आपे आप सुजान है वट पुरख बिडाती।

विचार महला पहला वस्त्र पखाल पखाले काया आपे संजम होवे अंतर मैल लगी नहीं जाने बाहरों मल मल धोवे अंधा भूल पया जम जाले वस्त पराई अपनी कर जाने होमे विच दुख काले नानक गुरमुख होमे टुटे ता हर हर नाम त्यावे नाम जपे नामो आराधे नामे सुख समावे पवड़ी

पहला ना सूर सस मंडलो ना सपत दीप न जलो अन्न पौन फिर ना कोई एक तुई महला पहला ना रिजक दस्त आकसे हमारा एक आस वसे अस्त एक दिगर कुई एक तुई महला पहला।

समाइय बिन सतगुर सेवे नाही सुख निवास, फिर फिर आइय दुनिया खोटी रास, कूड़ कमाइय नानक सच खरा साला है पत स्यों जाइय। श्लोक महला पहला। तुद भावै तां वावह गावह, तुद भावै जल ना।

मैं बनजारण राम की तेरा नाम बखरवा पार जी रहाओ कोकिल होवा अंब बसां।

भगत करह मूर्ख आप जनाव है, नच नच टप है बहुत दुख पाव है। नचया टपया भगत ना होए, शब्द मरै भगत पाए जन सोए। भगत

गुरमुख नाम निधान लय दरगाह लय छिडाए रहाउ। लख चौरासी परम दे मन हठ आवे जाए, गुर का शब्द न चीन्यो फिर जोनी पाए। गुरमुख

मन शब्द मरै प्रतीत होए होमै तजे विकार जन नानक करमी पाइन हर नामा भगत भंडार गौड़ी बैरागण महला तीजा पे अड़ै दिन चार है हर हर लिख पाया सोभावंती नार है गुरमुख गुण गाया पेव कड़ै गुण समलै सहुरै वास पाया गुरमुख सहज समाणिया हर हर मन पाया ससुरै पेय फिर वसै कहो कित विद पाइय आप निरंजन।

मुरारा, शिव शक्त मिटाइया चूका अंधियारा, तुर मस्तक जिन कौ लिखिया तिन हर नाम प्यारा, हर कित बिद पाइय संत जन हो जिस देख हों जीवा, हर बिन चसा ना जी।

निर्गुण कथा कथा है हर की, भज मिल साधु संगत जन की, तर भौजल अकथ कथा सुन हर की, गोविंद सतसंगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए रहाओ, जो जन त्यावह हर हर नामा, तिन दासन दास करो हम रामा, जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुन

बिन सजाए कूरा कच पाचा, जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा, गौड़ी ग्वारे री महला चौथा। सतगुर सेवा सफल है बनी, जित मिल हर नाम ते आया हर तनी, जिन हर जपया।

गुर ज्ञान गुरु लिव लागे, अज्ञान अंधेरा बिनस बिनासियो, घर वस्त लही मन जागे, साकत बद्धक माया धारी, तिन जम जोहन लागे।

पिंड सब सतगुर आगै जिन विछड़िया हर गल लाया मेरे अंतर प्रीत लगी देखन को गुर हिरदे नाल दिखाया सहज अन

ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे, हम मल मल धोवह पाम गुरु के जो हर हर कथा सुनावे। हृदय गुरमत राम रसायन जिहवा हर गुण गावे, मन रसक रसक।

सिर ऊपर ठाडो धर्म राय, मीठी कर कर बिखिया खाए। हो बंधो हो साधो बैर, हमरी भूम कौन घाले पैर। हमरी

इस ग्रह में कोई जागत रह साबत वस ओह अपनी लह रहाओ। सगल सहेली अपने रसमाती ग्रह अपने की खबर न जाती मुसन हार।

रख हो रखन हारे, खेद कर है अर बहुत संताव है, आयो शरण तुहारे। कर कर हार्यो अनक बहु पांती, छोड़ है

सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस देहे ना मानस देहे बहुर नह पावे, मानस दे बहुर नह पावे, कशु कशु उपाओ मुक्त का कर रे। मानस दे बहुर नह पावे, कशु उपाओ मुक्त

सिद्ध कहावों रिद सिद्ध बुलावों ताज कुल है सिर छतर बनावों बिन जगदीश कहां सच पावों खान मलूक कहावों राजा अबे तबे कूड़े है पाजा अबे तबे कूड़े है पाजा बिन गुर शब्द न सब

बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोहित सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट।

अंतर साच सहज कर आवहे, राजन जान परम गत पावहे, सच करनी गुर परम चुकावहे, निर्भउ कै कर ताड़ी लावहे, हों हों कर मरना क्या पावहे, पूरा गुर भेटे सो चगर चुकावहे।

सी अलख अपेवा सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना ना मोह भूले जम का दुख सहना मैं तार नाम ज्यों राख हो रहना चौधरी राजे नहीं किस

सेवा गुर चरणी मन ते मन मानिया चूकी अहं भ्रमणी इन बिद कौन कौन नहीं तारिया हर जस संत भगत निस्तारिया प्रभ पाए हम अवर ना पारिया साच महल गुर अलख लखाया निहचल महल नहीं छाया माया साच संतोखे परम चुकाया जिन कै मन वसया सच सोई तिन की संगत गुरमुख होई ना।

अल्लाह गुर प्रसादी बूझले तो होए निबेरा कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द न

नाम रते मन निर्मल होए, सतगुर सेवै सूतक जाए, मरै न जन्मै काल न खाए, शास्त्र सिमरत सोध देखहु कोए।

आए। गुरमुख कर्म धर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई। गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन पर बुद्ध हो बूझो सोई। लोक समझावहो सुने ना कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई।

परम पुलहाए मानमुख अंधे सदा भिख खाए जम डंड सहे सदा दुख पाए जमुआ ना जो है हर की शरणाई होमे मार सच लिवलाई सदा रहे हर नाम लिवलाई।

नानक गुरमुख बूझै कोई गौड़ी महला तीजा नाम अमोलक गुरमुख पावै नामो सेवै नाम सहज समावै।

मन कर हला सतगुर पुरख त्याए रहाओ, मन कर हला विचारिया हर राम नाम त्याए, जिथे लेखा मंगिए हर आपे लै छाए, मन कर हला अत निर्मल।

गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम संभाल मन करहला मेरे प्यारिया सतसंगत सतगुर पाल सतसंगत लग हर त्याईए हर हर चले तेरे नाल मन करहला बड़ भागिया हर

छड विकराल हर हर नाम संभाल तू हर मुक्त करे अंतकाल मन कर हला बट भागिया तू ज्ञान रतन संभाल गुर ज्ञान खड़ग हथ धारिया जम

तब इसको है मुश्किल भारी, जब इन करने हार पछाता, तब इसनो नाही किछ ताता, जब इन अपनो बांधियो मोहा, आवे जाए सदा जम जोहा, जब इसते सब बिन से परमा, भेद नाही है पार ब्रह्मा, जब इन किश कर माने भेदा, तब ते दुख दंड अर खेदा, जब इन एको एकी बूझया, तब ते इसनो सब किश सूझया, जब एहो तावे माया अर्थी, न तृप्तावे न तिसलाथी, जब इसते एहो होयो जौला, पीछे लाग चली उठ कौला, कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदिर मह दीपक जलियो, जीत हा

होए। गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसका हृदय मंत्र दे हरी। अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द रिद अंतर तहर।

साध संग तरै गौड़ी महला पंजवां जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिस है वड्याई।

जो इस मारे तिस कौ पहु नाहे, जो इस मारे सो नाम समाहे, जो इस मारे तिस की तृष्णा बुझे, जो इस मारे सो दरगह सिजहै, जो इस मारे सो तनवंता, जो इस मारे सो पतवंता, जो इस

जो इस मारे सो जीवन मुक्ता, जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता, जो इस मारे सो ही सो ज्ञानी, जो इस मारे सो सहज ध्यानी।

तिस कुल नहीं जाती, जिस भया कृपाल तिस सतसंग मिलाया, कहो नानक गुर जगत तराया। गौड़ी महला पंजवा।

हर संग रखवाला, पूर्ण पुरख नवतन नित बाला, हर अंतर बाहर संग रखवाला, कहो नानक हर हर पद चीन सर्बस नाम।

मंडन दुख पंजनों भगत वचल हर नायो अनाथ है नाथ कृपाल दीन समृत संत ओटायो निर्गुणी आरे की बेनती देहो दर

प्यारे अहंस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे। गुर शब्द विचारे हों मैं मारे इन बिद मिलो प्यारे। साधन सुहागन सदा रंग राती साचे नाम प्यारे। अपने गुर मिल

आप रहया आप सब कल धारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक शरण तुम्हारिया मोहन तुद

या जुग मह एक है कौ आया, जन्मत मोहयो मोहनी माया, गर्भ कुंट मह उर्ध तप करते, सास सास सिमरत प्रभ रहते, उर्ज परे जो छोड़ छड़ाना, देवनहार मन है बिसराना, कार हो कृपा जिस है गुसाई, एत उत नानक तिस बिसरहो नाही। श्लोक

जी बहुत गर्भ वासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रै गुण बस कीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कछ कहो उपाय।

पुरुष माने प्रगट पुरख सब ठाऊं जाने जाको दीनो हर रस अपना नानक गुरमुख हर हर तेह जपना। श्लोक

अखर महंत्र पवन प्रवतहारे, अखर कर कर वेद विचारे, अखर शास्त्र सिमरत पुराना, अखर नाद कथन बखियाना, अखर मुकत जुगत पह परमा, अखर मुकत जुगत पह परमा, अखर कर्म किरत सोच धर्मा,

गुरुदेव बंधप सुहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेसै गुरुदेव मंत निरुधरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मुहूर्त गुरुदेव पारस परस परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर।

सिमरन रिद सिद्ध नौ निध प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन दिन सह दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ इशनानी प्रभ कै सिमरन दरगाह मानी प्रभ कै सिमरन हुए सो पहला प्रभ कै सिमरन सुफल फला

से पुरख प्रधान प्रभ कौ सिमरहें से बे मोहताजे प्रभ कौ सिमरहें से सर्व के राजे प्रभ कौ सिमरहें से सुखवासी प्रभ कौ सिमरहें सदा।

अष्टपदी जह मात पिता सुत मीतना पहाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई जह महा भयान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरे चलै जह मुश्किल होवे अत पहारी हर को नाम खिनमाहे उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपहो मन मेरे नानक पावहो सुख कनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोरी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै अनक माया रंग ते

निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम मह उदम भला हर का नाम जपहो जी सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जस सुन।

अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कम दृष्टानी जिन तू साज स्वार शिंगारिया गर्भ अग्न मह जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार दूध पर जोबन भोजन सुख सूद

स्नेही जिह प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पाव है हर हर जस कहत। जिह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन शरणी पर ठाकुर प्रवता कै। जिह प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन सास सास।